0: possibly you can throw in along with them a former finance secretary or a former Reserve Bank governor, both of whom could not complete their time in India or in the government. And for the right reasons, many of you, if you look back, will remember all that the country was going through in the 2012-13-14 period. They don't even know how to compare apples with apples. They are trying to misguide the people of India, comparing a growth rate and an old series with a new series, where the base year itself has changed. They are trying to find holes, but you know, okay, there is 7.8% growth, but where are the jobs? And everywhere I go.
1: जो लोग जीडीपी का चाहे आपने नाम ले लिया कांग्रेस कांग्रेस हो या जो लोग हों या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा हाँ कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें तमाम निराशावादी जो सदा सर्वदा भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता ढूंढना चाहते हैं भारत की सेना में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं भारत की संस्कृति में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं धर्म में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं और हर वर्ग को आपस में लड़ाना चाहते हैं ऐसे विपक्षी नेताओं के अरमानों पर गाज गिरी है जब भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की है जो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
3: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान सच्चाई देश की हकीकत ये है प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं
4: अब यही है ना सोना क्यों नहीं खरीदने का जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए सबको डायबिटीज हो गया इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए और यहाँ हालत तो ये है पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है शक्कर का टैक्सी के फेयर का चीनी का तुम्हारा दूध का सबका भाव बढ़ गया पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है
5: और द राम टेंपल ट्रस्ट हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एवर सीईओ एंड द चॉइस इज अ डेकोरेटेड फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा हु सर्व फॉर 38 इयर्स इन द आईएएफ एंड कमांडेड द वेस्टर्न एयर कमांड ही विल नाउ ओवरसी द टेंपल ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिश्रा ऑल्सो सर्व ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर बट द अपॉइंटमेंट हैज नाउ ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल ड्राउ Congress and the opposition parties are questioning why a retired air marshal was chosen for temple administration, with some asking why a religious figure or saint was not appointed for the post. Congress's Udit Raj has injected the caste angle and asked why a person from the SC/ST or OBC community was not picked for the post. The BJP, however, has welcomed the move, saying that the new CEO will bring greater transparency and even better administration. Let's track some more updates on this for you. You know, an important story coming in from commanding India's Western Air Command during Operation Sindoor to now taking charge of the Ram Mandir Trust, the most important administrative responsibility. Air Marshal Jitendra Mishra has been appointed the first CEO of the Trust, a fighter pilot, a test pilot, a military commander, and now the man tasked with bringing discipline and accountability into the temple administration. Take a look at this special report that breaks down all the details for you.
6: For more than four decades, Air Marshal Jitendra Mishra operated where the margin of error was almost zero.

0: welcome. My name is Reet Kaur Sahani, and you're watching NDTV This Morning. You got an action-packed show lined up for you, but let's first take you through the headlines of the hour. India's 7.8 GDP growth has sparked a political war, with the government hitting back at the opposition criticism. BJP has accused the opposition of pessimism, while the opposition is questioning what the numbers mean on ground. The Ram Mandir Trust has appointed retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. The appointment has triggered a political row, with the Congress questioning the choice, while the BJP says that he will bring greater transparency and trust. A week after devastating floods in Nepal, more than 4,000 people remain unaccounted for. Families are still waiting for answers as authorities turn to photographs, DNA testing and even temporary burial to identify the victims. Flood fears are rising across North India, with Ganga, Yamuna, Gomti, Ganga and Kosi swelling across Uttar Pradesh and Bihar. In Uttarakhand, a heavy rain has now triggered rock slide, while flooded families have been displaced in Bihar. Let's now take you through the top story of the hour. India's GDP growth of 7.8% has triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Top economists have rejected the 2.6 growth claims by cynics of the data, reiterating that such calculations are done mistakenly between two different series of data. This hasn't deterred political criticism from coming in. The Congress, remember, has mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. Within hours, the BJP now hit back with its own cup tea taunt, accusing the Congress of manufacturing the division. Taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers do not manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism.
1: और व्यवस्था जो ये तय करती है हर महीने क्या हुआ, हर तिमाही में क्या हुआ, वो व्यवस्था वर्षों वर्षों से वही चल रही है। कोई हम राजनीतिक लोग, मंत्री या एमपी या हम में से कोई ये आंकड़े नहीं बनाते। हम जाके एक एक इंडस्ट्री से, एक एक सेक्टर से डेटा लेके उसको कंपाइल नहीं करते। अब आप जब ऐसी नकारात्मक सोच सामने दृष्ट लेके आते हैं, तो एक प्रकार से आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं। जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ।
2: ऑपोजिशन लीडर्स, इवन पॉसिबली यू कैन थ्रो इन अलोंग विद देम अ फॉर्मर finance secretary or a former reserve bank governor, both of whom could not complete their time in India or in the government. And for the right reasons, many of you, if you look back, will remember all that the country was going through in the 2012-13-14 period. They don't even know how to compare apples with apples. They are trying to misguide the people of India, comparing a growth rate and an old series with a new series, where the base year itself has changed. They are trying to find holes, but you know, okay, there is 7.8% growth, but where are the jobs? And everywhere I go.
3: Jo log GDP ka, chahe apne naam le liya Congress, कांग्रेस हों या जो लोग हों, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है। 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा। हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है।
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें तमाम निराशावादी जो सदा सर्वदा भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता ढूंढना चाहते हैं, भारत की सेना में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं, भारत की संस्कृति में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं, धर्म में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं और हर वर्ग को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐसे विपक्षी नेताओं के अरमानों पर गाज गिरी है जब भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की है जो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था।
5: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
6: अब यही है ना सोना क्यों नहीं खरीदने का, जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और यह हालत तो ये, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
0: Or at the Ram Temple Trust has appointed its first ever CEO and the choice is a decorated former Air Force officer, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the IAF.

0: ओनली ऑन NDTV नेटवर्क।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर JK टायर।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: ने वहां पर इनको धर्माचार्य को नियुक्त करना चाहिए था और वहां परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं उन शंकराचार्य के द्वारा वहां पर नियुक्ति होनी चाहिए थी, जिससे निश्चित तौर से वहां धर्म की जो चीज़ें चल रही हैं वो मजबूती के साथ और आगे रहती हैं और धर्म को लोग मानते। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने अगर CEO नियुक्त किया है तो वो क्या चढ़ावा चोरी के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जो चोर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? वो जितने भी पैसे वहाँ से गायब हुए भगवान के दरबार से, क्या वो पैसा वापस आएगा भगवान के दरबार में? और जितने भी लोग हैं, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, चाहे वो अनिल मिश्रा हों, गोविंद देवगिरी हों, चाहे वो गोपाल राव हों, और जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जैसे महाचोर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उनको जेल भेजेंगे?
1: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके RSS के जंगल में फंस गए वो, अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे। क्या तमाशा है भाई। मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो, अब RSS वालों को तो पैसा दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर पे चढ़ रहा है खूब दबा करके, देखो उसके ऊपर। अभी देखिए ये तो हमारा विषय नहीं है, अभी तो साधु संतों के साथ ही पूजा पाठ अर्चना का काम तो साधु संतों का है, उन्हीं पे रहने दो।
2: Honorable Prime Minister has to speak when he has had made a big halagul of inaugurating the Ram Mandir. People have looted the money. Are they made accountable? Are they punished? He is not even speaking a word. Now Uttar Pradesh elections are coming. The Chief Minister and Prime Minister has colluded and bringing in a retired Chief Air Marshal, seeing the people attention diverted so that they can win the election again. The law demands the people who are responsible for looting the money given by the people across India in the name of Lord Rama, those people should be accounted, they brought to justice, they should be punished first.
3: Ram Mandir mein chadhave ke hisab kitab ke liye uske dekh rekh ke liye CEO banaya gaya sena ke retired afsar ko, iska matlab ab sarkar ko Modi ji ko भाजपा RSS VHP के लोगों पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। अब वो दबाने के लिए लाख कोशिश करे लेकिन देशवासियों के आस्था को ठेस तो पहुंचा ही दिया है।
4: एक मिश्रा गए, दूसरे मिश्रा आए, पहले नृपेंद्र मिश्रा जी थे, अब जितेंद्र मिश्रा जी आ गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और ये कोई पुजारी का पोस्ट नहीं है, तो क्या जरूरी है कि एक ही जाति का आदमी सक्सीड करे? SC ST OBC से भी कई ऐसे कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि बात तो लीकेजेज को मैनेज करने की है, क्योंकि पूजा पाठ का तो मतलब है नहीं इनका, तो इसी से लगता है कि जहाँ पर फायदे वाली पोस्ट है वहाँ ये लोग खुद बैठ जाते हैं।
5: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
6: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने CEO अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सभी चोर हैं, तो फौजी और चोर के अंत के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहाँ पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
7: हमारे साथ वारिस पठान है। जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर CEO का, पहले CEO का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
8: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया, उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने ट्रस्ट बनाया, अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया। यकीन मानो मेरे हिंदू दोस्त तो मुझे फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई ये हमारी आस्था के

0: the revised GDP series, while critics have questioned how the growth rate is being calculated, and in particular, what happens when different GDP series and price measures are used. The Congress mocked the government's 7.8% number with a froth jibe on X. The BJP responded with its own cup tea counterattack, while Kiran Rijiju accused the Congress of being in deep intoxication. And Piyush Goyal said that politicians do not manufacture GDP figures. This exchange of insults hasn't settled the economic question yet, as critics are highlighting many major questions. How strong is 7.8% growth when we examine what is driving it? What does it mean per capita? And what is happening to wages, to jobs, consumption, and household purchasing power? Listen in to the crucial reactions we've lined up for you.
1: सच्चाई छुप नहीं सकती
2: और
1: व्यवस्था जो ये तय करती है हर महीने क्या हुआ हर तिमाही में क्या हुआ वो व्यवस्था वर्षों वर्षों से वही चल रही है कोई हम राजनीतिक लोग मंत्री या एमपी या हम में से कोई ये आंकड़े नहीं बनाते हम जाके एक एक इंडस्ट्री से एक एक सेक्टर से डेटा लेके उसको कंपाइल नहीं करते अब आप जब ऐसी नकारात्मक सोच सामने दृष्ट लेके आते हैं तो एक प्रकार से आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ
3: जो लोग जीडीपी का चाहे आपने नाम ले लिया कांग्रेस कांग्रेस हो या जो लोग हों या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा हाँ कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें तमाम निराशावादी जो सदा सर्वदा भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता ढूंढना चाहते हैं भारत की सेना में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं भारत की संस्कृति में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं धर्म में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं और हर वर्ग को आपस में लड़ाना चाहते हैं ऐसे विपक्षी नेताओं के अरमानों पर गाज गिरी है जब भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की है जो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
5: देखिए कितना सही बोला प्रधानमंत्री जी ने मैंने कल भी कहा था कि पिछले साल इस तरह से पूरे माहौल को भयभीत करने वाला वक्तव्य दिया था राहुल जी ने कि जैसे कि भारत का इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रहा है और आज जो है विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जब हो गया है तो अब जो लोग है आज हम देख रहे हैं कि इन लोग को ये स्वीकार नहीं हो रहा है ये एक अनपच की स्थिति बस और इसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से कांग्रेस पार्टी जूझ रहा है और जूझना है उसको
6: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान सच्चाई देश की हकीकत ये है प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं
7: अब यही है ना सोना क्यों नहीं खरीदने का जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए सबको डायबिटीज हो गया इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए और यह हालत तो ये है पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है शक्कर का टैक्सी के फेयर का चीनी का तुम्हारा दूध का सबका भाव बढ़ गया

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
4: अरे मेरे राजा.

0: ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं, जिसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मुखौल उड़ाया जाता है।
1: पहली बात तो थ्रेट इसलिए कश्मीरी पंडितों को मिलती है क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस घर वहाँ पे जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनके ज़मीनों पे हमारी जायदादों पे कब्जा किया है उनको वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वापस गए तो, उनके लिए तो हम थ्रेट ही है। सेकेंड है टेररिस्ट, वो नहीं चाहते प्लूरलिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म इन कश्मीर, तो वो नहीं चाहते वो सब चीज़ें। वो सिर्फ बातें, ये सब पॉलिटिशियन लेकर जो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं और जहाँ कहीं के भी पॉलिटिशियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोज यही करेंगे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने का। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उनके बयान से हमको कोई अपेक्षा है नहीं।
2: इट इज कन्वीनियंट टू होल्ड पीपल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिट लिस्ट फॉर द किलिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज, बट डेयर यू नॉट स्पीक अ वर्ड अगेंस्ट ISI, the society that supports jihad, the Pakistani government and the terror organization that have killed thousands of innocents in Kashmir. You find it convenient to blame the system, the Indian agencies, the Indian government, than to blame the real people behind the sinister designs in Kashmir, the people who have been responsible for the death of thousands of Kashmiris.
3: All right, moving on to the other crucial stories we're tracking. The Ram Temple Trust has appointed a former senior Air Force officer, Air Vice Marshal Jitendra Mishra, as its first full-time CEO. He brings 31 years of military experience. The former officer held several commanding positions in the Indian Air Force as well, and he was the chief of its Western Command during Operation Sindoor. And now he will oversee the Temple's Trust Administration. This appointment has triggered a political row too. Congress and other opposition parties are questioning why a retired Air Marshal was chosen for temple administration, with some also asking why a religious figure or a saint was not appointed. You must also note that AIMIM's Waris Pathan's charge is that while now people are being brought in, those who were previously responsible must still face accountability. And the IUML is questioning the very choice of a retired Air Force officer for this post. The BJP, on the other hand, has welcomed the move, saying the new CEO will bring greater transparency and better administration. This, as the opposition is essentially asking two questions. Is this a genuine institutional overhaul? And what happens to the allegations concerning the old system? Here are the reactions you need to listen to.
4: Purv Air Marshal Adarani Jitendra Mishra Ji, Prabhu Sri Ramlala Mandir ke naye CEO honge. मैं उनकी नियुक्ति पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रभु रामलला ने जिस ढंग से उन्हें आशीर्वाद दिया है, मैं कह सकता हूँ कि श्री जितेंद्र मिश्रा जी के पदभार ग्रहण करने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएँ बेहतर ढंग से संचालित होंगी।
5: आज हमको भी अभी जानकारी मिली है कि हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के CEO मिल गए हैं हमको। बहुत उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। और देश की रक्षा और सुरक्षा करने के बाद अब सनातन धर्म के प्रेमियों को और विश्व में फैले हमारे राम भगवान की जो कीर्ति और रस है, ऐसे ट्रस्ट को संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली है। हमको पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे।
6: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये

0: देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
1: देखिए, जो नए सीओ का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, नए सीओ चुके फौजी कमांडर थे, 40 साल तक उन्होंने फौज में खिदमत दी, उनको एक लंबा तजर्बा इस बात के लिए है। दूसरे वेस्टर्न कमांड भी उन्होंने संभाली है, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है। सवाल वही है सबसे बड़ा कि उनका इम्तिहान जो फौज में था वो तो ख़त्म हो गया, अब राम मंदिर में आकर जो सीओ बने हैं तो यहाँ से एक नया इम्तिहान उनका शुरू होगा, और ये इम्तिहान में वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखने की बात होगी।
2: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
3: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहां पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सभी चोर हैं, तो फौजी और चोर के अंत के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहां पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
4: साथ वारिस पठान है। जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीओ का, पहले सीओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
5: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया, उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने ट्रस्ट बनाया, अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया। यकीन मानो मेरे हिंदू दोस्त लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हमारी आस्था का कत्ल कर दिया है लोगों ने, करोड़ों का आपने घपला किया, 1200 करोड़ से भी ज्यादा का घपला दिख रहा है। एक एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, वहां पर एसआईटी अपॉइंट हुई थी, उस रिपोर्ट में दर्शाता है कि 70 से ऐसे उनके पास एविडेंस है जिसमें बता रहे किस तरह से चंदा लोग चोरी कर करके भाग रहे। और इतना ही नहीं, एफआईआर किया आपने 8-9 लोगों को, उसके अंदर ये किया, चंपत कहाँ चले गए उनका तो पता ठिकाना ही नहीं, आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, सीईओ अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गए, जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या उनको कब सजा मिलेगी, उन पर कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? तो ये जनता तो ये सवाल कर रही है ना, अपॉइंट करिए। जो उस टाइम पे ये हुआ, जिन लोगों ने इतना बड़ा घपला कर दिया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना इनके बारे में, बीजेपी के बारे में, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे।
6: I heard some air marshal has been appointed over there. I mean, it's okay, but then it doesn't mean, you know, जो कुछ भी करोगे आप उसका ये नहीं मतलब होता है कि पहला गुना माफ हो गया। चोरी की है भैया, तभी तो हमें एयर मार्शल बिठाना पड़ रहा है, अगर चोरी न करती तो ये बिठाना पड़ता क्या?
7: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram Temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Champat Rai. We all knew that Champat Rai was directly involved in this Ram temple theft. But there is no investigation qua this Champat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
8: Well, Air Marshal Jitendra Mishra retired, spoke to NDTV and said that he feels fortunate that he has been given the chance to serve the nation for 40 years and then directly at the Ram Temple. Asked if he is looking forward to the challenge of negotiating a different terrain, he told NDTV, and I quote, "If this is the command of Lord Sri Ram, then I have no right to question it." Listen into that exclusive conversation.
9: You heard about it from the television an hour back. Before that, you had no idea about it, sir?
10: No, not at all. Gee.
9: How do you feel about this, sir? It's a very, very different role from what you've been doing so far. You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
10: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to, having given me an opportunity for 40 years to serve the nation. Now I've got the opportunity to serve the Shri Ram Temple and the Shri Ram Baths.
9: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during operations in... Tell us a little bit about what the warfighter in you is looking forward to in this new role, sir.
10: So, you know, the responsibilities of the CEO are available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the blessings of for having found me adequate to take up this responsibility. So far as the plan for the future is concerned, I'm very sure under the guidance of the trust and along with my other teammates, I will try and do my best that is possible for the organization and administration of the temple.
9: You've spent your entire career, Air Marshal, in a very challenging environment. Are you looking forward to this new posting in the best traditions of another very challenging assignment for you, sir?
10: अगर ये प्रभु श्री राम की आज्ञा है तो इसमें मेरे लुकिंग फॉरवर्ड या मानने ना मानने का कोई अधिकार नहीं बनता है।
9: How is your family? How has your family received this news, sir?
10: They are exhilarated, and we all consider ourselves fortunate to have got this opportunity.
9: So, when do you begin your work, sir? What are the next steps before you take on this new role?
10: I presume I'll be speaking with the trust. They let me know when to take over the appointment as such. There must be a formal procedure. And as soon as I take over, I'll start my work.
8: All right, on that note, let's turn our attention to tragic details emerging from the national capital. Two people are dead after a speeding Thar SUV collided with a motorcycle in Delhi Can. The victims have been identified as Anju and Supriya, we can confirm. They were riding the motorcycle when the SUV hit them late last evening. And we can confirm that the driver was apprehended by bystanders and handed over to the police. In terms of what's next, police are now examining CCTV footage from the accident site and surrounding areas to reconstruct exactly what happened. These are the visuals we have accessed as two people are dead after a speeding Thar SUV collided with a motorcycle in the cantonment area in Delhi. The victims have now been identified as Anju and Supir. We're told they were riding the motorcycle when the SUV hit them late last evening. And the driver was apprehended by bystanders and handed over to the police then. Police are now examining CCTV footage from the accident site and surrounding areas to reconstruct

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, for the elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा।

0: relieved armed forces of the country.
1: Well, just yesterday, Air Marshal retired Jitendra Mishra was appointed as the CEO of Ram Temple Trust, and post that there were several comments that came in from the opposition bloc, including Congress leader Udit Raj's comment, which stated that by appointing a former army personnel, by appointing a former Air Force officer, the government had certainly some intention in their mind. There might be some hidden truth that the government wanted to hide from the entire country, and giving him responsibility of Ram Temple Trust, which certainly is nowhere in his domain to handle a temple, while he was always a professional army personnel. It is something that reflects government's identity, government's mindset as to what they wanted to do and what they wanted to hide in terms of Operation Sindoor, which Jitendra Mishra had categorically had a huge role in terms of the Air Force operations. Perhaps the Bharatiya Janata Party on the other side had slammed the Congress commentary over it, the BJP clearly stating that this is the same Congress party which had questioned the sincerity of Operation Sindoor, which had questioned the whereabouts of Balakot airstrikes by the Indian Air Force back in Pakistan. And certainly they have always asked questions from the Indian Army, and they never had supported them. Perhaps this is the same mindset because of which now they are questioning the integrity of an army personnel, an Air Force officer who had a role in Operation Sindoor during the strikes that India did inside Pakistan as well. So certainly there has been huge commentary going on. The Bharatiya Janata Party clearly welcoming the step, giving such a responsibility to an decorated officer in the Indian Air Force. But certainly how it pans out and how certainly the Congress again reacts to this is something that remains to be seen.
0: All right, so face off between Congress and BJP over Ram Mandir CEO's appointment. Thank you, Aishwarya, for getting us those details. Politics has erupted after appointment of Air Marshal Jitendra Mishra as first ever CEO of Ram Mandir Trust. In fact, he is a retired Air Marshal, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the IAF and commanded the Western Air Command, will now oversee the Temple Trust's administration. Mishra also served during Operation Sindoor. Congress has raised questions over the appointment and said that, "I wonder if there's some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as CEO here." Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav has said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed. The BJP, however, has hit back at opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Let's listen in to reactions and statements coming in.
2: "And I consider myself the most fortunate person today to have been given this responsibility twice in my life. Ek bar rashtra seva ke liye aur abhi Shri Ram ke mandir ki aur Shri Ram bhakton ke liye mandir ke organization aur administration ke liye."
3: "Mujhe lagta hai ki jo bhi nirnay trust ne liya hai wo samast vyavasthaon upyogitaon dakshtaon को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी and mobility दोनों बढ़ेगी।
4: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं, कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
5: देखिए, जो नए सीओ का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, नए सीओ चूंकि फौजी कमांडर थे, 40 साल तक उन्होंने फौज में खिदमत दी, उनको एक लंबा तजर्बा इस बात के लिए है। दूसरे वेस्टर्न कमांड भी उन्होंने संभाली है, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है। सवाल वही है सबसे बड़ा कि उनका इम्तिहान जो फौज में था वो तो ख़त्म हो गया, अब राम मंदिर में आकर जो सीओ बने हैं तो यहाँ से एक नया इम्तिहान उनका शुरू होगा, और ये इम्तिहान में वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखने की बात होगी।
6: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
7: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सभी चोर हैं, तो फौजी और चोर के अंत के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहाँ पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
8: वारिस पठान है, जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीईओ का, पहले सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
9: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया, उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने एक ट्रस्ट बनाया, अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया, और इतना ही नहीं एफआईआर किया आपने 8-9 लोगों को उसके अंदर, ये किया चंपत कहाँ चले गए, उनका तो पता ठिकाना ही नहीं, आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, सीईओ अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गया, जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या?
10: I heard some air marshal has been appointed over there. I mean, it's okay, but then it doesn't mean, you know, जो कुछ भी करोगे आप उसका ये नहीं मतलब होता है कि पहला गुना माफ हो गया। चोरी की है भैया, तभी तो हमें एयर मार्शल बिठाना पड़ रहा है, अगर चोरी ना करते तो ये बिठाना पड़ता क्या?
11: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Champat Rai. We all knew that Champat Rai was directly involved in this Ram temple theft. But there is no investigation qua this Champat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
0: A new chapter begins at the Ram Mandir Trust. Retired Air Marshal Mishra has been appointed as the new CEO. In his interview with NDTV, he calls it a chance to serve the nation and says it is Prabhu Shri Ram's order. Here is that exclusive conversation.
12: Heard about it from...
13: No, not at all. Ji.
12: How do you feel about this, sir? It's a very, very different role from what you've been doing so far. You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
13: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to, having given me an opportunity for 40 years to serve the nation. Now I've got the opportunity to serve the Shri Ram temple and the Shri Ram Bhats.
12: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during Operation Sindh. Tell us a little bit about what the warfighter in you.

0: who is looking forward to in this new role, sir?
1: So, you know, the responsibilities of the CEO are available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the blessings of for having found me adequate to take up this responsibility. So far as the plan for the future is concerned, I'm very sure under the guidance of the trust and along with my other teammates, I will try and do my best that is possible for the organization and administration of the team.
0: You've spent your entire career, Marshall, in a very challenging environment. Are you looking forward to this new posting in the best traditions of another very challenging assignment for you, sir?
1: अगर ये प्रभु श्री राम की आज्ञा है तो इसमें मेरे लुकिंग फॉरवर्ड या मानने ना मानने का कोई अधिकार नहीं बनता।
0: How is your family? How has your family received this news, sir?
1: They are exhilarated, and we all consider ourselves fortunate to have got this opportunity.
0: So, when do you begin your work, sir? What are the next steps before you take on this new role?
1: I presume I'll be speaking with the trust. They let me know when to take over the appointment as such. There must be a formal procedure. And soon as I take over, I'll start my work.
2: Moving on, a political row over threats to Kashmiri pandits is widening, with the National Conference Chief Farooq Abdullah calling the threats a conspiracy to block JNK's statehood. Farooq has questioned why Hindu police officers face no similar threats, while alleging the LG and administration are behind them. The BJP has hit back, with Ravinder Raina saying Pandit security cannot be linked to statehood or used for political bargaining. Congress MP Imran Masood has also raised questions, claiming threats and attacks surfaced during election times and asking who benefits from them. Meanwhile, terror victim Vikas Raina says pandits are being targeted because they want to return home, and claimed those who have encroached on their land see their return as a threat. We have statements and reactions. Take a look.
3: यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं रह रहे हैं. मुझे ये बताइए, यहाँ सब अफसर बाहर से हैं जो हिंदू हैं. आपके पुलिस के डीआईजी, डीजी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी हिंदू हैं. डीसी हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारा पुलिस है, सारा यहाँ का मामला है, वो क्यों नहीं देता है जवाब इसका? उसे पूछिए ना, ये कहाँ से आ रहा है, कौन थ्रेट दे रहा है? मैं तो उनसे आरोप लगाता हूँ, यही लोग थ्रेट दे रहे हैं और यही थ्रेट के जिम्मेवार हैं.
4: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि कश्मीरी पंडितों को जो धमकियां मिल रही हैं उसको उन्होंने स्टेटहुड से जोड़ा, राज्य के दर्जे से जोड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है. कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कोई राजनीतिक सौदेबाजी का विषय नहीं है.
5: चुनाव आ रहे हैं, कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि सारे आतंकवादी हमले, सारी चीजें, धमकी हैं, ये सब नफरत की चीजें हैं. ये सब चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाती हैं, हो रही हैं चुनाव के टाइम पर. और किसका किसको इनका फायदा होता है? जिसको फायदा होता है वो इसके पीछे जिम्मेदार है.
6: अब ये मूर्खतापूर्ण एक तरीके से कहा जाए, वक्तव्यों का कोई उत्तर नहीं होता. उनको कैसे पता चल गया कि अभी आतंकी अटैक होने वाला है? ये कांग्रेस के पास से कहाँ से ये न्यूज़ आ जाती है? अगर न्यूज़ आती है तो उसका आधार क्या है? अगर आपके कहने के बाद अटैक होता है तो निश्चित रूप में आपकी उस वाणी के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ से पता चलता है. इस प्रकार की आशंकाओं को पैदा करके आप डर क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर कोई चीज़ सत्य है और कोई कह रहा है तो उसको आप झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं?
7: फारूक अब्दुल्ला का बयान एक सॉफ्ट सपोर्ट है आतंकवादियों को. फारूक अब्दुल्ला का बयान वही बयान है जैसा सोनिया गांधी ने दिया था बाटला हाउस के समय, जब उनको आंसू आ गए थे बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए, एज पर सलमान खुर्शीद. फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं। इसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मुखौल उड़ाया जाता है।
8: पहली बात तो थ्रेट इसलिए कश्मीरी पंडितों को मिलती है क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस घर वहाँ पे जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनके ज़मीनों पे हमारी जायदादों पे कब्ज़ा किया है उनको वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वापस गए तो, उनके लिए तो हम थ्रेट ही है। सेकेंड एक टेररिस्ट वो नहीं चाहते प्लूरलिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म इन कश्मीर, तो वो नहीं चाहते वो सब चीज़ें। वो सिर्फ बातें ये सब पॉलिटिशियन लेकर, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं और जहाँ कहीं के भी पॉलिटिशियन, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोज यही करेंगे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने का। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उनके बयान से हमको कोई अपेक्षा है नहीं।
9: इट इज कन्वीनियंट टू होल्ड पीपल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिट लिस्ट फॉर द किलिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज, बट डेयर यू नॉट स्पीक अ वर्ड अगेंस्ट ISI, the society that supports jihad, the Pakistani government and the terror organization that have killed thousands of innocents in Kashmir. You find it convenient to blame the system, the Indian agencies, the Indian government, than to blame the real people behind the sinister designs in Kashmir, the people who have been responsible for the death of thousands of Kashmiris.
2: Moving on, India's GDP growth of 7.8% has triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by cynics of the data, reiterating that such calculations are erroneously done between two different series of data. This hasn't deterred political criticism. Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. So within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. Taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said Congress was in deep intoxication and out of touch with reality. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism.
10: Both of whom could not complete their time in India or in the government. And for the right reasons, many of you, if you look back, will remember all that the country was going through in the 2012-13-14 period. But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
11: जो लोग जीडीपी का, चाहे आपने नाम ले लिया कांग्रेस, कांग्रेस हों या जो लोग हों, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है। 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा। हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है।
12: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही है जो आप बता रहे हैं।
13: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: also inherent within the BJP in the context of Vijay emerging as a strong leader in Tamil Nadu, and the alliance with the Congress could lead to a repeat of that, how the DMK swept polls earlier in 2024 and 2019. Now that could be repeated by the Congress and TVK in Tamil Nadu.
1: But Sam, you know, this whole two parties, this chorus that the Congress says, no, it's going to be Rahul Gandhi as the PM face 2029, and TVK is time and again saying that Chief Minister Vijay will be pegged as the PM face. Don't you think this has perhaps brought some kind of friction between TVK and its ally Congress within just months of Chief Minister Vijay assuming that top post in Tamil Nadu?
0: Outwardly, certainly, it is leading to discomfort with Congress ministers openly saying that their continuation will be untenable because TVK and Congress are allies, and Congress is pitching Rahul Gandhi as the PM face, and here is another challenger emerging from within their alliance. But inwardly, we do not know whether they have settled that this is only for public consumption. There is no such chaos or confusion in real terms, because one TVK minister has ruled out such confusion between Congress and the TVK. So we'll have to wait and watch whether it's a strategic thing to keep the BJP quiet, and internally whether they have settled everything that Vijay accepting Rahul Gandhi's candidature, or is Vijay quietly trying to push himself as a potential PM face now that if they believe that they have enough numbers in terms of securing a majority even without the Congress, because already at one point in time you had the rebel AIADMK MLAs willing to support the TVK. At the moment, yes, they require the Congress's support for the majority, but if the TVK is very clear about pushing Vijay to the national scenario for as a prime ministerial face, then there will be a situation at some point the ties would be severed.
1: Yeah.
0: And for that, what's the plan B? Perhaps if the TVK is confident of getting support from AIADMK, then they may not be worried about that. But
1: right,
0: at the
1: Sam,
0: moment,
1: you know,
0: it is causing friction, at least outwardly.
1: And that's exactly what the Bharatiya Janata Party is also asking, that has TVK perhaps rejected Congress's Rahul Gandhi's leadership? We'll be tracking all that's coming off Tamil Nadu very closely with you. But for now, shifting our focus to another story that matters on the show. A political row over threats to Kashmiri Pandit is widening, with National Conference Chief Farooq Abdullah calling the threats a conspiracy to block Jammu and Kashmir statehood. Farooq has now questioned why Hindu police officers face no similar threats, while alleging that the LG and the administration are behind them. The BJP has hit back, with Ravindra Raina saying that Pandit's security cannot be linked to statehood or used for political bargaining. Congress MP Imran Masood has also raised questions, claiming threats and attacks that surface during election times and asking who benefits from them. Meanwhile, terror victim Vikas Raina says that pundits are being targeted because they want to return home, and claimed those who have encroached on their land see their return as a threat.
2: यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं रह रहे हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ सब अफसर बाहर से हैं जो हिंदू हैं, आपके पुलिस के डीआईजी, डीजी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी हिंदू हैं, हैं डीसी हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारा पुलिस है, सारा यहाँ का मामला है, वो क्यों नहीं देता जवाब इसका? उसे पूछिए ना कि कहाँ से आ रहा है, कौन थ्रेट दे रहा है? मैं तो उनसे आरोप लगाता हूँ कि यही लोग थ्रेट दे रहे हैं और यही थ्रेट के जिम्मेवार हैं।
3: फारूक अब्दुल्ला साहब का यह बयान कि कश्मीरी पंडितों को जो धमकियां मिल रही हैं उसको उन्होंने स्टेटहुड से जोड़ा, राज्य के दर्जे से जोड़ा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कश्मीरी पंडितों कि सुरक्षा कोई राजनीतिक सौदेबाजी का विषय नहीं है।
4: चुनाव आ रहे हैं, कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि सारे आतंकवादी हमले, सारी चीजें, धमकियां, ये सब नफरत की चीजें, ये सब चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाती हैं, हो रही हैं चुनाव के टाइम पर। और किसका किसको इनका फायदा होता है, जिसको फायदा होता है वो इसके पीछे जिम्मेदार है।
5: अब ये मूर्खतापूर्ण एक तरीके से कहा जाए वक्तव्यों का कोई उत्तर नहीं होता। उनको कैसे पता चल गया कि अभी आतंकी अटैक होने वाला है? ये कांग्रेस के पास से कहाँ से ये न्यूज़ आ जाती है? अगर न्यूज़ आती है तो उसका आधार क्या है? अगर आपके कहने के बाद अटैक होता है तो निश्चित रूप में आपकी उस वाणी के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ से पता चलता है। इस प्रकार की आशंकाओं को पैदा करके आप डर क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर कोई चीज़ सत्य है और कोई कह रहा है तो उसको आप झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं?
6: फारूक अब्दुल्ला का बयान एक सॉफ्ट सपोर्ट है आतंकवादियों को। फारूक अब्दुल्ला का बयान वही बयान है जैसा सोनिया गांधी ने दिया था बाटला हाउस के समय, जब उनको आंसू आ गए थे बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए, एज पर सलमान खुर्शीद। फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं, जिसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मुखौल उड़ाया जाता है।
7: पहली बात तो थ्रेट इसलिए कश्मीरी पंडितों को मिलती है क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस घर वहां पे जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनके ज़मीनों पे, हमारी ज़मीनों पे, हमारी जायदादों पे कब्जा किया है, उनको वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वापस गए तो। उनके लिए तो हम थ्रेट ही है। सेकेंड है टेररिस्ट, वो नहीं चाहते प्लूरलिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म इन कश्मीर, तो वो नहीं चाहते वो सब चीज़ें। वो सिर्फ बातें, ये सब पॉलिटिशियन लेकर, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं और जहाँ कहीं के भी पॉलिटिशियन, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोज यही करेंगे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने का। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उनके बयान से हमको कोई अपेक्षा है नहीं।
1: Shifting our focus to other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Top economists have now rejected the 2.6% growth claims by cynics of the data, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This has not deterred political criticism. Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. Within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. Taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism.
8: Both of whom could not complete their time in India or in the government. And for the right reasons, many of you, if you look back, will remember all that the country was going through in the 2012-13-14 period. But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
9: Jo log GDP ka chahe apne naam le liya Congress, Congress ho या जो लोग हों, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है। 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया।

0: ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा। हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है।
1: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
2: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
3: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Jensen Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Listen in to what he said.
4: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
3: And well, politics has erupted after appointment of Air Marshal Jitendra Mishra retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the Indian Air Force, also served during Operation Sindoor. He has expressed gratitude for the new opportunity. Congress has now raised questions over the appointment and said, and I'm quoting here, "I wonder if there are some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed. Take a listen to all the reactions, the politics which has broken out over the new Ram Mandir CEO.
5: "And I consider myself the most fortunate person today to have been given this responsibility twice in my life. Ek bar rashtra seva ke liye aur abhi Shri Ram ke mandir ki aur Shri Ram bhakton ke liye mandir ke organization aur administration ke liye."
6: Retired army air chief ko aapne Ram Mandir Trust ka CEO bana diya hai, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी, उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है, उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था, कोई फर्क नहीं है।
7: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा, और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों बढ़ेगी।
8: ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए क्लीन चिट मिल गई है तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने। जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
9: There was massive loot. Now everybody accepts that. Until and unless the real culprits are nabbed and they are brought to book, they are brought for the legal, you know, process. And only if they are given the necessary punishment, in future people would kind of desist from engaging in this kind of. Public loot of the donations given by Rama Bhaktas. Now if some air marshal and such people with some credibility, if they are being brought on top of this institution, whether things can be solved or not, we have to wait and see.
10: हमारे साथ वारिस पठान है। जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीईओ का, पहले सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया। उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया और इतना ही नहीं, एफआईआर किया आपने 8-9 लोगों को उसके अंदर, ये किया। चंपत कहाँ चले गए? उनका तो पता ठिकाना ही नहीं। आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे, लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, सीईओ अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गए, जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या?
11: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram Temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Chambat Rai. We all knew that Chambat Rai was directly involved in this Ram Temple theft. But there is no investigation qua this Chambat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
12: Nobody was trusting Modi anymore. So he brought in army to cover that up. And now, when the entire country, they have been exposed that they have come to power by using this Ram Temple issue. And now, they were systematically looting this Ram Temple. And this was the intent for them to use, to come to power and then loot Ram Temple. That was the intent. Now they have been exposed and nobody is trusting Modi anymore in this country. So again he has brought in the military to say that they are trying to install the confidence in the people. I don't think people will fall for this again.
3: And we have some breaking news coming in for you from West Bengal. TMC has now written letters to the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Governor of West Bengal as well, seeking appointments for AITC delegations to highlight utter lawlessness, a disturbing and systematic misuse of the police being carried out by the BJP in Bengal. And that's what the TMC has claimed. That's why they've written a letter to the President of India and the West Bengal Governor. They're saying that the disturbing and systematic misuse. Well, TMC MP Derek O'Brien also said that the letters were sent on Thursday morning. And TMC is also now seeking meetings with the President in Delhi and the West Bengal Governor in Kolkata, because of the attacks on their party members. If we go across Ritik, take a listen to the reactions coming in on this topic.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Renew clean energy humse hai.
1: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
3: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
4: The deflection by the system. And it's a slow death really that Gurugram is now seeing.
3: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV. So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
5: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, there were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
6: We are more than 90 people here. So we are trying best.
5: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
7: Devastating floods that have struck Nepal have left behind scenes of heartbreaking destruction. Lives have been lost, families are grieving, many are still waiting desperately for news of those they love. Homes and livelihoods have been swept away, and the full measure of this tragedy is still unfolding.
8: NDTV has reached the ground zero.
9: Welcome back, and we have some other news that's breaking right now. Bharatiya Janata Party's take on Bhagwant Mann government. BJP alleges corruption by Mann government. BJP says hush money used to suppress the rape case. And BJP's Pradeep Bhandari has more on this. Take a look.
10: Number one, ये prove कर रहा है कि जो मुख्यमंत्री के middleman मुख्यमंत्री को खुद को involve कर रहा है. अब audio number two आप सुनिए, जिसमें amount की चर्चा हो रही है.
11: अपने बंदे
12: पटाका
11: बैज
12: होगी. ठीक है ना, या तो मैं
10: ये बोल रहा है मिडिलमैन। सो पहले मिडिलमैन ने बोला, सीएम और सीएम की वाइफ ने ऐसे ऑफ द कफ कभी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकता। सेकंड में वो कह रहा है भाई अमाउंट भी फिक्स हो चुका है और मैं बार बार अमाउंट के ऊपर कॉन्वर्जेशन नहीं करूंगा। अब आप तीसरा ऑडियो सुनिए। ऑफर फिक्स हो चुका है, पैसे कई लोगों को जाने हैं। सो आप क्रोनोलॉजिकली समझिए, पहले मिडिलमैन बात करता है, ये एक्यूज गुरविंदर चहल बोलता है कि भाई मैंने केस जो है मेरे को अब रेप पीड़ित मैं रेप एक्यूज हूं, मुझे अपना केस निपटाना है। तो ये मिडिलमैन के टच में आता है, मिडिलमैन बोलता है कि भाई मुख्यमंत्री साहब से बात हो गई है, मुख्यमंत्री के ऑफिस से बात हो गई है, अब अमाउंट है पीछे मत ट्रैक करना। तो बोलता है मैं पीछे ट्रैक नहीं करूंगा। फिर दूसरे ऑडियो में बात होती है कि भाई अमाउंट अब फिक्स हो चुका है, सो देयर इज एन अमाउंट व्हिच इज बीन फिक्स्ड। और तीसरे में वो कह रहा है कि भाई अमाउंट को बाकी लोगों के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स थ्री थिंग्स कि क्या मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी एक सिंडिकेट चला रहे हैं जिसमें रेप के केसेस को ये वापस लेने के लिए रिश्वत और पैसा ले रहे हैं। क्या चार्ज नंबर टू ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एक सिंडिकेट ऑफ करप्शन बन चुका है, कि आम आदमी पार्टी का लूट का मॉडल अब पंजाब में यह हो चुका है कि रेप के केसेस के लिए पैसा लेंगे, जैसे दिल्ली में शीश महल का करप्शन का लूट का था। और तीसरा, ये एक सिंडिकेट है, ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, इसीलिए बाकी शख्स की भी बात हो रही है। अब आप बात करते हैं,
9: and well, this is perhaps a major political controversy that's erupted in Punjab. Allegations that Gurpreet Kaur, the wife of the Punjab chief minister, demanded rupees 5 crore bribe to suppress a rape case, and that's exactly what Pradeep Bhandari is questioning. We'll be tracking that and lots more stories that matter here on NDTV. But for now, stepping into a very short break, come right back, lots more lined up for you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: अक्रॉस द कंट्री
3: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। Witnessed history being made in global capitals and countries.

0: He taunted, accusing Congress of manufacturing division. Taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said Congress was in deep intoxication and out of touch with reality. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by cynics of the data, reiterating that such calculations are erroneously done between two different series of data. This hasn't deterred political criticism. Let's listen in to some of the reactions and statements.
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है. पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है.
2: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट. And for the right reasons, many of you, if you look back, will remember all that the country was going through in the 2012-13-14 period. But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
3: जो लोग जीडीपी का चाहे अपने नाम ले लिया कांग्रेस, कांग्रेस हो या जो लोग हो, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है. 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया. ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा. हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता. उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है.
4: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान. सच्चाई देश की हकीकत ये है. प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है. वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं.
5: मैंने एक डिमांड करता है, मांग करता है कि उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए. स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए. वेदर 2011-2002 बेस ईयर्स चेंज एंड सब्सिक्वेंटली द क्राइटेरिया फॉर अराइविंग जीडीपी दैट वाज आल्सो चेंज. इसलिए बिग इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग हाईलाइटेड. इसलिए हमने क्लैरिफिकेशन और स्पष्टीकरण चाहिए. सरकार ने इस बात से स्पष्टीकरण करना चाहिए. अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो गया हमारे मन में, और इंटरनेशनली भी हमारा इमेज ऑफ कंट्री विल बी अफेक्टेड.
0: And NDTV's executive editor Gauri Dwivedi spoke exclusively with Dr. Saurabh Garg, Secretary, Minister of Statistics, on the GDP growth issue. Take a look.
6: Amidst the GDP growth numbers that have come in, 7.8% about the India growth story, you have naysayers who have themselves changed their multiple positions as far as data interpretations is concerned. But what exactly does the data say? What really does the statistical reality really show? And why those who are doomsayers and naysayers have got it absolutely wrong? To talk on those aspects, we have with us Dr. Garg, who is the Secretary of Ministry of Statistics and Program Implementation, the very body which actually conducts these detailed data analysis and reading. Dr. Kuttagar. Thank you so much for speaking to us on NDTV.

0: and collector of the city. Also, the Prime Minister was briefed on flood relief measures. Meanwhile, UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken an aerial survey of the flooded areas and also met with the flood affected families. Now let's shift focus to Uttarakhand. In Uttarakhand's Rudraprayag, heavy rain led to a rock face breaking away and sending debris and boulders down the slope. In Bihar, flooding and river erosion are displacing families, with the Gandak River triggering erosion in Bettiah, while Ganga and Kosi are overflowing in Bhagalpur. Take a look.
1: ये भैया तीन चार दिन हो गया ये जलस्तर इसका लगातार बढ़ ही रहा है और अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो फिर खतरा भी हो सकता है अरे खतरे के निशान से भी 15-15 फीट होगा 15 फीट अगर बढ़ेगा तो फिर यहाँ समझ लीजिए बाढ़ आ सकता है
2: यहाँ पर गंडक नदी जो है ये कटाव कर रही है दो माह से और यहाँ दो माह पहले जो है छोकर का निर्माण हुआ था वो बल्ली को का निर्माण हुआ था और जियोटेक वेग का निर्माण हुआ था यहाँ पे जिसके चलते अगर छोकर बनाया उसके बाद यहाँ पर अगर 3-4 फीट ऊंचे हाइट में अगर बांध का निर्माण हो गया होता तो यह पानी जो है नदी के गंडक में रह जाता पानी साइड से नहीं बहता तो गांव जो कटने से बच जाता
3: मैं इस वक्त बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हूँ जो कि एक यहाँ के बारे में किंवदंती है कि कभी भी जो चिता है यहाँ पर जलती हुई वो शांत नहीं होती है लेकिन ये भी आप देखिए कि

0: सैकड़ों जो चिताएं हैं वो लोग लेकर आते हैं। और आप देखिए कि नाव के ज़रिए अब यहाँ से लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। बनारस के अगर पूरे घाट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर घाट इस वक्त डूब चुके हैं और वहाँ पर नाव के ज़रिए अब यहाँ पर आप देखिए कि आवागमन हो रहा है। ये अगर आप देखिए नाव ना हो तो आप देखिए कि कई सारे जो मकान हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है और नाव के जरिए
1: 100 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं नाव वाले, हर आदमी पीछे मुर्दा, हाँ मुर्दा वाले से भी ले रहे हैं।
0: ये आप देखिए कि ये पूरी जो गली है यहाँ पर अफरा तफरी भरा माहौल है। पूरी जो गली है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लकड़ी जो अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग की जाती है वो भी लोग लेकर आ रहे हैं, पूरा कमर तक पानी में डूब के। नाव यहाँ पर एक आने जाने का जरिया बनी हुई है।
2: Alright, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, a controversy after the Keralam Chief Minister's social media post is deleted. We'll get to the details.

0: पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
1: ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने, तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
2: In other news, now India's GDP growth of 7.8% has triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Now, Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties, of course, the West Asia crisis. The Prime Minister also called the 7.8% rise India's growth story. This after the Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X, questioning this growth, questioning where these GDP numbers came from. Within hours, the BJP hit back with its own taunt of a cup tea, accusing the Congress of manufacturing division. And taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said the Congress was in deep intoxication and out of touch with reality. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal has added that ministers don't manufacture data, urging citizens not to fall for pessimism. Top economists have also rejected the 2.6% growth claims by some, reiterating that such calculations are erroneously done between two different series of data. This hasn't, however, deterred the political criticism.
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
4: रोटी, कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
5: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर all that the country was going through in the 2012-13-14 period, but I don't know where they do not find people employed, the naysayers who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left and the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
6: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बड़ा है क्वार्टरली, अब उसका इंपैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और यहाँ हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा।

0: और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहाँ पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहाँ तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूँगा।
1: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो। और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे। वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है। चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो।
2: बोथ कांग्रेस एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्लीपलेस नाइट्स। जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है। जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
3: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कि जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
4: All right, so controversy there after the appointment of the Ram Mandir Trust CEO. With that, we'll sip into a short break. More on the other side. Stay with us.
5: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
6: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
7: By noon the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
8: The deflection by the system and it's a slow death really that Gurugram is now seeing.
9: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV
7: so you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood, weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV when it really matters.
10: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
11: We are more than 90 people here. So we are trying best.
10: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of

0: और आप एक इलेक्ट्रिशियन हो
1: यहाँ? हाँ, इलेक्ट्रिशियन।
0: थैंक यू, आप बच गए। थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ ठीक रहिएगा। Well, there you have it, an idea of the damage in just this one place. And think about it, for a country that exports its electricity, it's got a surplus. The

0: की डेड बॉडी मिली नहीं है, लोगों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया है। और उसके बाद जो कुश का यानी कि जो पुआल होता है उसका ये बॉडी बना के और उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। तो आप देखिए वो पशुपतिनाथ के मंदिर में, तो इतने हृदय विदारक दृश्य है। हालांकि ये कैमरे पे बहुत सारे लोग बात करने से हिचक रहे हैं, उनके लिए अभी ये बहुत ही दुख की घड़ी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जो चिता सजाई गई है उसमें ऊपर में कुश का एक पुतला बनाया गया है, यानी कि पुआल का एक पुतला बनाया गया है, उसे डेड बॉडी मान के जलाया जा रहा है। क्योंकि डेड बॉडी जो है जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उनका बॉडी मिल नहीं रहा है और परिजनों ने ये उम्मीद खो दी है कि अब उनका बॉडी उन्हें मिलेगा।
1: So many symbolic cremations taking place in the impacted areas. This is a way for families to seek closure. That's all we have time for today on day 9 of this tragedy that continues to unfold after the big flash floods that impacted so many areas here in the Himalayan nation. I leave you with this visual of an angry Narayani river, strong currents here, perhaps sending out a message of how humans have been the biggest menace when it comes to nature. Thank you for watching this special broadcast.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा।

0: Graduate youth unemployment stands at almost 25%. You cannot celebrate 7.8% growth when everybody is also seeing that on the 31st of August, you had 8,000 crores worth of FIIs leaving the country. So now the medium is certainly important. We're waiting for the message to be gotten right.
1: Okay, so you're saying that he's got greater engagement, but that doesn't necessarily mean positive engagement.
0: I think he should be reading the comments.
1: All right, Dr. Ranganathan, have you been reading the comments? Who's got their game together?
2: It's very good evening, Padmaja, and good evening to my fellow panelists. First of all, I take offense to being clubbed not in the youth by my good friend Anish.
0: I never did not club you in the youth. You're 100% in the youth.
1: I said Anish is youngest of the lot, but everyone here is youthful, if not youth.
2: No, but thank you for having me. It's very difficult to say, you know, which side, opposition or the ruling dispensation, wherever they may be, in non-BJP ruled states, that's what you would count them, have up. I think all of them have constantly been worried about their social media game. But I think what really matters is how much do people trust more than they engage. I mean, I have watched or sat through programs. They have engaged me, but what they've said is absolute rubbish and they've frustrated me. It's a bit like in the 90s when you would read a newspaper and you had no avenue to protest other than write a letter to the editor, which would never be published. So I think those two things, I think Anish is right to some extent. You can get engagements if you want through clickbait or through, there are hundreds of processes and mechanisms by which you can draw an audience, but to have the audience trust you is a totally different matter.
1: Okay, and so who's done it better?
2: No one. That's the whole point. No one.
1: Why is
2: that? No political party has garnered the kind of trust that people should be trusting them, because all of them lie more than they tell the truth. That's the fact.
1: Okay, but at least in engagement, who's better at catching eyeballs according to Vivek Srivastava?
3: You see, I personally feel I agree with him to some extent that it's the other way around. Earlier it is the Congress party before independence. Gandhi ji rasta dikhayenge, log chalenge. Today it's absolutely the reverse. It is the Gen Z which says these are the issues, and every political party tries to echo that.
1: Achha, theek hai, Gen Z has won the day, but politically who's managed to read their mind better?
3: I'm just telling you. So now what happens is it's a very fast moving kind of a medium. Ek event hua jantar mantar pe. उसके जो प्रोटेस्टर्स हैं अचानक सडनली यू सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड इट इंक्रीजेस इट आउट सो कंसिस्टेंसी ऑफ दिस एंड देन विल इट ट्रांसलेट इनटू द वोट्स विल इट ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट विल इट ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर द आइडियोलॉजी दैट दैट पार्टी स्टैंड्स फॉर दीज आर द बिग क्वेश्चंस एंड देन आई अग्री विद डॉक्टर रंगनाथन आई वॉच हिम एवरी डे बट आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई अग्री विद हिम और मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो कितना होता है वो भी जानते हैं मेरे दोस्त हैं तो लेकिन अब सुनना पड़ता है भाई आते हैं अच्छे स्पीकर हैं तो हम
1: भी जाते हैं फ्रस्ट्रेशन ये है कि कहीं भी रेटिंग्स में एंगेजमेंट में लेफ्ट पार्टी है ही नहीं वैसे लेफ्ट पार्टी यूट्यूब पे और इज इट टू कैपिटलिस्टिक फॉर यू
3: भाई देखिए अब
1: थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना यू लाइक वी आर नंबर वन ऑन ट्विटर बट ट्विटर इज ओन्ड बाय इलॉन मस्क ये तो ऑकवर्ड हो गया
3: नहीं नहीं सी इट्स इवन इफ द मीडिया इज ओन्ड बाय एनीवन यू सी यू मस्ट गो यू मस्ट ट्राई यू मस्ट टॉक But today it is the public, especially the younger generation, they are questioning. And I tell you, I'll give them some fact, you give them some fact, Harshvardhan ji can give them some fact. Ye bachche sunne wale nahi hai.
1: Okay.
3: Bolenge pehle double check karenge, Google pe jayenge, fir baat karenge.
1: 30 seconds, Dr. Ranganathan, then Harshvardhan ji, yes.
2: No, thank you. Thank you for the compliment as always, Vivek. And Padmaja, Vivek is right. I also listen to him whenever I want China's point of view. He's the first person I turn to. But you know, when I think we are going overboard when we talk about ab sab Gen Z ki sun rahe hain. Are bhai, hamari nahi suni. So let's not talk about that the powers that be are listening. They were ignorant. They did not act. And they were, for example, told in the case of cockroaches, Cockroach Janata Party, this is the issue, why have you ignored it? There were others who were also telling them, don't ignore it. They kept on ignoring. Doesn't mean they're listening to the people.
1: My question today is slightly different. It's not about whether people are forced to listen to Gen Z. It is about who Gen Z is listening to. Now, every party, without a doubt, is trying to reach out to this demographic. Mera seedha sa sawal hai ki bhai, किसकी लिंगो किसका भाषा इज अपीलिंग मोर टू Gen Z व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया बिकॉज क्लियरली दैट्स द थ्रस्ट
4: परमजा जी सबसे पहले तो ये कि कॉकरोचेज एंड कम्युनिस्ट आर सर्वाइविंग वेरी वेल तो इसलिए ये कहना कि अभी ये नहीं रह गए ये ठीक नहीं होगा लेकिन बड़ा सवाल दूसरा है, क्या हम सोशल मीडिया पर जो आईबॉल कैचिंग देख रहे हैं, जो क्लिकबेट चल रहा है, जो रिपोस्ट है, वो क्या सचमुच इश्यूज को लेकर है? किस पर हम लोग, किस रील पर हम लोग ज्यादा देर तक टिके रह रहे हैं, क्या वो इश्यूज का
1: नैरेटिव बिल्डिंग है ना? इश्यूज अलग है, पहले आप एक नैरेटिव चला रहे हैं कि कौन आगे है,
4: कौन ज्यादा अपील कर रहा है। क्योंकि आपने नंबर शुरू में बताए, जब नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर आए थे तो वो अपने इश्यूज को लेकर आए थे, वो अपनी इमेज बिल्डिंग को लेकर आए थे, उनके पास टेक्स्ट फॉर्मेट होता था, उनके पास फैक्ट होता था, उनके पास पाई चार्ट होता था, उस पर वो इंगेज करते थे। डिफरेंस जो अभी वो समझना होगा। फिर ये जिसको हम कह रहे हैं कि यूथ आ गया और कम उम्र के बच्चे आए, इंस्टा वाले आ गए, तो ये 15 सेकंड रील पर आ गए। अब अभी जो नई सोशल मीडिया टीम बीजेपी की आई, क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत अग्रेसिव थी, जो सोशल मीडिया टीम थी कमाल का काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि हर बात पे वो सवाल पूछ रहे थे। जब आप हर बात पे सवाल पूछते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आईबॉल्स ज्यादा आपको मिलते हैं, लेकिन क्या कोई नैरेटिव क्रिएट हो रहा था? क्या नहीं हो रहा था? क्योंकि नैरेटिव अगर क्रिएट होता तो इतने इलेक्शन के रिजल्ट जिसमें यूथ लगातार वोट कर रहा था कुछ दिखता नहीं।
1: पर उसमें कुछ तो बदलाव होगा ना।
4: मैं उसी पर बीजेपी क्या रिएक्ट कर रही है,
1: मैं आपको बताती हूँ। नैरेटिव की बात है भाई, अभी तक आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था मन की बात, कि सब बैठ करके सोफा पे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। नाउ यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट हैव अ वन वे मन की बात। नाउ पीपल वांट टू एंगेज विद यू Instagram, they want to go immediately and comment under and say, हमें ये पसंद नहीं आया।
4: मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप में से पता नहीं किसी ने AK-47 कभी देखी है कि नहीं देखी? मैंने देखी है। तो उसमें एक गनर से मैंने पूछा, तो उसमें जानते हैं क्या है कि एक होता है A लिखा होता है, एक S लिखा होता है। सिंगल बुलेट फायर करनी हो तो यानी समझदारी के साथ करना है, और ए जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी आपने एक बार कर दिया तर तर तर तर जितनी। ये सोशल मीडिया ऑटोमेटिक हो गया है, यानी गोली कहां लग रही है, कौन सा नैरेटिव बन रहा है, ये किसी को नहीं पता। गोलियां चल रही हैं, आईबॉल्स कैच हो रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। सवाल ये है कि जो नई बीजेपी की सोशल मीडिया टीम आई, उसने एकदम देशज में कहें तो गर्दा उड़ा दिया है। बहुत आईबॉल मिल रहे हैं एकदम से, बीजेपी गोवा, बीजेपी महाराष्ट्र, तो बीजेपी इजराइल वाला भी अकाउंट से आता है। सवाल ये, क्या सचमुच नैरेटिव पर बात हो रही? मैं ये मानता हूं पार्टीज नैरेटिव पर सोशल मीडिया पर ना तो बात कर रहे हैं, ना एंगेज कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जिनको हम यूथ कह रहे हैं वो भी नैरेटिव पर, इश्यूज पर उस तरह से बात नहीं कर रहे।
1: ओके, लेट मी डू अ क्विक स्नैप पोल over here, how many people think that the BJP has got their social media mojo back? Thoda bahut, kyun?
5: Because now PM is also like coming on reels, and he's becoming a reel creator. I mean, creating.
1: But does it work? Do you want your prime minister to be a reel creator, or you want him to be a prime minister?
5: Like, I don't know.
1: You don't know? Arey bhai, itna outreach kiya, uske baad if you don't know, that is some serious worry. Yes, who do you think has got their game
6: together?
1: Good
6: evening. I do not say ki kisi ke paas koi apna mojo hai ya nahi hai. I'd say ki saying ki prime minister ko reel banana chahiye, nahi banana chahiye, it's up to him. He's prime minister, he's doing his prime ministerial duties as well. So I don't mind that. The thing is that aaj ki date mein average youth ka screen time is more than 6.5 hours. That is concerning. To say that 25% of people are youth are unemployed, I mean, it is a factor. This 6.5 hours is a factor. If you believe it or not, I do not care, but like, this is a factor. Secondly, get some grass, guys. Go touch some grass.
1: भाई ये बता भी दिए, व्हाट इज सपोज टू मीन? ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को मुझे समझ में ही नहीं आया, मतलब क्या होता है टच सम ग्रास का?
6: गेट आउटसाइड ऑफ योर हाउसेस, गेट आउटसाइड योर होम्स, गेट आउट ऑफ योर स्क्रीन्स।
3: देखो स्क्रीन से वो कह रहे हैं
1: डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन, आप इतना आउटरीच करने के बाद अगर बच्चे बोल रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा है कि नहीं, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस आउटरीच?
2: No, first of all, thank you to this gentleman for explaining that Gen Z lingo. मैं तो कुछ और ही सोचने अभी घास से लग गया।
1: Don't touch that grass. Don't touch that grass.
2: No, only. But I no. Let me not complete that. Look, Padmaja, there's a serious point I wanted to make. There is no difference in what the Prime Minister, let's be honest about it, has been doing for the last 12 years. अभी आपने कहा ना पहले मन की बात करते थे, अब इंस्टा पे आ गए. It's still a one-way interaction. He is not interacting with people. He is telling them what he feels.
4: नहीं, मुझे लगता है कि आनंद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल, मैं उससे कम से कम एग्री नहीं करता हूँ. मन की बात का पूरा प्रोसेस चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ. मन की बात नरेंद्र मोदी के मन की बात होती ही नहीं है. मन की बात की टीम बाकायदा एक बहुत बड़ा बेस है जिनसे वो सर्वे करते हैं, जिनसे वो क्वेश्चंस लेते हैं, जिनसे वो नए नए स्टोरी आइडियाज पूछते हैं, जिनसे वो नई सक्सेस स्टोरीज पूछते हैं और उस पर वो काम करके फिर उनमें से लाकर कहते हैं कि इसको नरेंद्र मोदी को मन की बात के तौर पर करना चाहिए। तो ये वन वे नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, या कहें कि बाकायदा ये डायलॉग है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इशू अलग है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हम तो पत्रकार के तौर पर चाहेंगे कि हर दूसरे दिन पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे, लेकिन क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्या सवालों के जवाब नहीं मिल रहे? तो मुझे लगता है कि जो भी सवाल हैं उनके जवाब तो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहे, सोशल मीडिया पर दे रहे हो, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दे रहे हो, अलग अलग तरीके से।
1: वेरी क्विकली अनीश एंड दिस यंग लेडी हियर।
0: हर्षवर्धन जी, नहीं दे रहे। पैलेट गन दिल्ली में चली या नहीं चली, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। दूसरे सवालों का भी जवाब
4: कभी कोई पीएम नहीं देता है,
0: मतलब होम मिनिस्टर दे दे, तो होम मिनिस्टर दे दे, उनकी कैबिनेट दे दे। नो, द प्रॉब्लम फंडामेंटली हियर इज देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स मैसेजिंग एंड दैट ऑफ हिज पार्टी। You cannot have the Prime Minister say that you cannot call people anti-national. You cannot have Mohan Bhagwat ji say you should not call people urban Naxal. And then BJP Karnataka releases a video of Dimagi Naxal firing bullets
1: that.
0: down.
1: Let's quickly take a look at that video and what people make of this. Is this good taste? Is this snappy communication or is this something else? Let's take a look at that Dimagi Naxal video that has people got people quite worked up. What do you guys make of this video? Yes, you sir. Who's a Dimagi Naksal? Apparently the nation wants to know. That's what the BJP is
7: if
1: saying.
7: If the communication is coming from power, I believe it should be positive. But what we are seeing here is that the government is saying ki jo unke detractors hain, unke saath aisa violence ya aisi social media violence ho sakta hai. What Gen Z is doing, they are asking questions to the power. They are asking people in the authority ki humare ye issues hain, is pe kya hua. But whatever this video is or what it is endorsing does not align with what I or my generation in whole wants.
1: Okay, but what if they say ki bhai ye to we are saying only in terms of jest, that we are not actually advocating violence, but we are saying that this is, you know, we are going to take you on in terms of narrative.
7: There's a theory of humor in sociology which says that socially healthy humor is one that hits up, not those who which hits down or to those people who are not in power.
1: Okay, so you're not punching down. And by the way, we're also talking about formats. Look, if Mann Ki Baat was working, if you want to quickly respond to this gentleman, then I will go talk about the format.
8: First of all, I would like to say that political satire is not new. Earlier in the 80s also, there were Abraham Matthews who used to draw cartoons. Now it's the meme. Earlier there was no Instagram. Now it's memes that are...
1: So you're saying this is political satire?
8: Yes, this is political satire and every party has a right to respond to it. I'm not saying if the BJP is saying something, then the Congress party has a right to respond to it in the form of memes, because this is what the generation is liking.
0: This is a meme,
1: like for example, you know, you had this Dimagi Naksal. Congress came back with Dimagi Paidal. They have put a picture of the Prime Minister and they've called it Dimagi Paidal. Now you may not necessarily agree with that language, but that's what their comeback is. Look, so you had the BJP saying aap samajh gaye honge Dimagi ... Congress has put out saying Dimagi Paidal. I mean,
0: there's a difference between humor and a messaging that suggests violence, right? That was not a humorous video.
1: Okay.
0: Did anybody look at that video and laugh?
9: No.
0: That's my simple answer.
1: Okay, Dr. Ranganathan wants to quickly respond and I'll talk about the format.
2: Yeah, no, just to carry on with the point that Harshvardhan ji made, it is and remains a one-way interaction by not just Modi, by every leader, cutting across party lines. Yes. I mean, there are hundreds of questions that Rahul Gandhi still refuses to answer. But you know, about Narendra Modi, two questions. He has given hundreds of interviews, but has he ever answered the fact that the person he was calling the perpetrator of 70,000 crore scam, he was inducted in BJP the next day? What about the BJP washing? So he refuses to answer the questions that we have in our mind. There are so many. For example, the latest question is the fact that when you talk about corruption, removing corruption, what is the amount of black money that you said would come back and has come back in the last 12 years? There are hundreds of such questions that people have in mind that he hasn't answered.
0: If you want to know if the tide is turning or not, Dr. Ranganathan saying this on national television tells you which side the mood of the country is on.
1: Are you suggesting that he's a turncoat?
2: Okay. Your leader also hasn't answered the question. Rahul Gandhi also hasn't answered the question.
0: Fair enough.
2: Nobody is answering the question. Everyone is pretty. For example, the Prime Minister said a government has no business to be in business. Has anybody asked him ki aapne kaha tha aur 1800 PSU chala rahe ho? Has anybody asked him?
1: Okay, but aren't we comparing apples and oranges over here? We are talking about communication of a larger scale, Dr. Ranganathan, where I'm simply talking today about the narrative building through social media. And surely these kind of issues, you can't expect to be explained or simplified or answered through a meme. Dr. Ranganathan, yes, finish.
2: I'm saying what Prime Minister needs to do. Yes, he's great. He's on Twitter. He's on Instagram, like every leader. But every leader should do AMA. I don't know whether the Gen Z know that acronym or not.
1: Ask me anything.
2: See, correct.
1: Okay.
2: वो जिस दिन करोगे ना उस दिन मैं मान जाऊंगा आपकी टू वे कम्युनिकेशन हो रही है.
1: ओके, डॉक्टर रंगनाथन की मन की बात है भाई कि प्रधानमंत्री AMA करे आके ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे वेरेवर.
4: ठीक है, एक तो आनंद जी जो कह रहे हैं ना कि अब अजीत पवार जी अब नहीं है तो इसलिए उनके बारे में क्या कहें, लेकिन किसी पार्टी में कोई करप्शन या किसी तरह के आरोप हैं वो आए और उस पर कोई पार्टी जवाब दे, ये बहुत आइडियलिस्टिक आनंद हो रहे हैं. तो ऐसा हो तो बड़ा अच्छा, लेकिन संभव नहीं. दूसरा, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, ये सब नौजवान हैं, लेकिन मैं इतनी देर में मुझे लगा कि थोड़ा सा सोशल मीडिया की डिबेट हो रही हो. जो मैंने शुरू में कहा था कि नैरेटिव है या व्यू पॉइंट जा रहा है, थोड़ा सा आप ज़्यादा रीच हो जा रही है. 8.7 मिलियन व्यूज़, जिसको आप लोगों ने कहा कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जो वीडियो दिखाया गया, 8.7 मिलियन व्यूज़. ये जितनी भी कैंपेन बीजेपी की चली है अभी सोशल मीडिया की नई वाली, उन सब में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है. कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में यही इसी तरह का माहौल बनाकर जो सोशल मीडिया पर एग्रेसिव कैंपेन थी, एक तरह से कहें कि उन्होंने लीड ले ली, बीजेपी ने उसको इस तरह से काउंटर किया. लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये काउंटर करना बहुत अच्छा है, नए मोजो इज बैक और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन सबके बाद क्या है? क्या उसका कोई नैरेटिव है, मैसेजिंग है? क्या कहीं पर लोग उससे जुड़ रहे हैं? मेरा ये मानना है ये 15-20 सेकंड के बाद जैसे वो आप रील आगे बढ़ा देते हैं वैसे इसकी सारी मैसेजिंग चली जाएगी.
1: वरना
4: हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है आइडियलिस्टिक होकर बात करना, मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं. ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? जिनके स्कूल बहुत अच्छे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. 25,000 स्कूल अगर बंद हुए तो 1,00,000 स्कूल खुल गए, वो प्राइवेट स्कूल्स थे. ये जो नौजवान पढ़ रहा है ये वहीं से पढ़ के आ रहा है, उसको भी ये बात करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता है कि इशू ये नहीं है.
8: सर, आई वांटेड टू कंप्लीट, मैं यही बोल रहा था ये बात, दैट कैन वी जज द मॉरल लीगल कैरेक्टर ऑफ अ मीम or a video by merely looking at the logo that is mentioned at the top right corner, whether it belongs to the hand or the BJP or the Samajwadi party. Because what happens is Akhilesh Yadav posted a video, the Samajwadi party posted a video on Yogi Adityanath. The BJP responded back by posting a video on Akhilesh, or the other way around. So the question is that why do we give a clean chit to Akhilesh Yadav's party when we are condemning Yogi Adityanath's meme? And why do we do the other way around also?
1: Very quickly, actually, let me show you the videos that this young man is mentioning. So what happened was that the BJP put out this video calling Akhilesh Yadav Tipu, and then Samajwadi party responded by showing Yogi Adityanath as somebody who is smoking a chillum. Can you please show that video which was there? All right. So basically referring to the time that Akhilesh Yadav was chief minister. This was posted not by the BJP's official handle, by the way, but by some Yad Rakhega UP. That was the name of the handle. And then they spoke about lawlessness, about how girls and business weren't safe, what happened at Safai, etc. And then the Samajwadi party held a press conference and they responded with a video on Yogi Adityanath. The question then is that it is an even for even. Today, Dimagi Naksal, that campaign is being attacked. Then Akhilesh Yadav, Congress are all doing the same thing, right? This is narrative building.
3: Yeah, narrative building ho raha hai. When you show a video jismein guns nikal rahe hain aur jisko maar rahe hain, uspe likha hua hai Dimagi Naksal. Aapne define kiya Dimagi Naksal kaun hai? Us video mein nahi define kar paaye na aap. Anybody who questions the Dimagi Naksal, any professor, teacher, student, हमारे कॉकरोच बच्चे जो सड़क पे आकर के लड़े, they are all Dimagi Naksals because you question the government. और ये मैसेज आप दे रहे हो, हमारी नहीं सुनोगे तो ये होगा.
1: This man is saying it's satire.
2: It's very simple, and that question should be answered by none other than my soulmate Vivek Srivastava. I'll tell you who a Dimagi Naxal is, who does not believe that Hidma was a terrorist. Now let me ask Vivek. Vivek, was Hidma a terrorist? What? Yes or no?
3: No, no, no. It's not a question. Of, hold on, hold on.
2: Bolo.
3: No. Hidma kahan se aa gaya beech mein?
2: Answer.
3: Ye sare Dimagi Naxal Hidma hai.
4: Dharm nahi mante, lekin dharm sankat.
3: Hai? Aur agar intellectuals, teachers baithe hue sawal pooch rahe hain, to tum Hidma la rahe ho. Aap ye bolo na, sarkar dari
4: hui hai. Sawal ka jawab nahi denge Dimagi Naxal.
3: बिल्कुल नहीं.
4: दिमागी नक्सल सवाल का जवाब नहीं.

0: वॉशिंग मशीन पे बोलो ना, अब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, धोबी घाट बन गया है। सारे गलत काम करो, आओ ले लेंगे, बोलिए ना। व्हाई नॉट, प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का है?
1: अरे भाई, कौन सी
0: पार्टी है? एजुकेशन मिनिस्टर किस पार्टी का था?
1: अरे सुन लो यार, अभी
2: यू टॉकिंग अबाउट हेमंत बिस्व शर्मा बिकॉज ऑफ द वीडियो बिफोर द इलेक्शंस वेयर ही वाज सीन टेकिंग द वे
0: ही स्पीक्स, द काइंड ऑफ कमेंट्स ही डज, व्हाई डजंट नानन स्पीक अप अगेंस्ट?
2: ओके, वी हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। यस, फिनिश योर पॉइंट डॉक्टर रंगनाथन।
1: एज आई सेड, आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। आई हैव कंडेमड एवरी गवर्नमेंट कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हु हैव एवर ट्रैम्पल्ड ऑन फ्री स्पीच एंड कंटिन्यू टू। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, one gentleman was absolutely right, satire has to be taken in that spirit. You can't say that it is a call for violence, because I will ask the same question. Was the famous slogan of 20 years ago, tilak tarazu aur talwar inko maro joote char, was that not a call for violence? Yes or no, Vivek Srivastava?
0: आप जो हैं, आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप यहाँ पे आज के 2026 में बीजेपी के कुकर्मों को डाइल्यूट करने के लिए बैठते हैं।
2: ओके, सो इफ वी आर, आई थिंक देयर इज अ लार्ज कंसेंसस ओवर हियर दैट परहैप्स स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ इमेजरी इन दीज मीम्स, बट लेट्स नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द मीम्स अबाउट द जीडीपी डिबेट। नाउ लुक, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डिबेट, अ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट वेरी कंफ्यूज्ड, बट व्हाट वाज द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट वी सॉ कमिंग फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस, एंड लेट्स क्विकली गेट दैट अप। यू'ड गॉट दिस which was put up by the Congress, where they showed a beer mug and they basically said that the actual beer was the Indian economy and the GDP figures were basically all froth. It was all fluff. Then the BJP came back and said ki bhai tum logon ko to sirf beer samajh mein aati hai, hum log chai ki baat kar rahe hain, and the GDP actually is 7.8% in the Modi era, and you had a dimagi naksal Congress. The Congress had a comeback to this as well, where they then made a chai edition on Bhakt's request, where they said ki bhai chai bahut kam thi, upar sirf jhag jhag tha. What did you guys make of this back and forth? Chalo, yahan pe koi goli woli nahi chal rahi hai. You thought this was clever? You think that the point came across?
3: Chai mein jhag hoti hai.
2: could be cold coffee, हो सकता है ये।
3: चाय में तो कभी जाग नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ है कांग्रेस के दिमाग, नहीं नहीं कांग्रेस के इस कैंपेन में।
2: आपने मीम को भी फैक्ट चेक कर लिया?
3: मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के कैंपेन में।
2: I thought that was, you know, the domain of only a few in this country who get to fact check even a meme, but good going. आपको भी अगर लेना चाहिए।
3: अगर दिमागी नक्सल पे बीजेपी की वो जो कैंपेन है वो वायलेंस की कॉल है, तो फिर ये क्या है?
4: ये कुछ भी नहीं है।
2: कुछ नहीं, ये तो मतलब
3: नहीं करो ना, क्योंकि दरअसल जब आप किसी तरह की मीम या कैंपेन चलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। उसमें आप देखिए, वो कोई ऐसा थोड़ी रहा है कि कोई कह रहे हैं कि नहीं सबको गोली मार देना। दिमागी नक्सल जो है उसमें एक साथ तत्तर गोलियां चल रही, ऐसे ही चलता है। विवेक बहुत उम्रदराज है, इनको अभी समझ नहीं कि कैसे लोग बात कर रहे
5: हैं। प्रधानमंत्री जी जोक मार रहे थे जब रेड फोर्ट से उन्होंने दिमागी नक्सल कहा,
3: ना वो सीरियस थे,
5: तो वो
3: इसीलिए उसको कैंपेन कन्वर्ट किया ना।
5: अच्छा,
3: वो सीरियस है,
5: उसको मीम बनाना सही है या गलत है?
3: बिल्कुल, अरे मीम पे तो आप बात करते हैं। आप अनिश भाई, आप तो फिर आप तो उसी जनरेशन से आ रहे हैं, हम लोग तो थोड़ा आगे के हैं। विवेक भाई तो उम्रदराज हैं, लेकिन आप तो समझिए।
2: ओके, व्हाट डू यू गाइस मेक ऑफ दीस काइंड ऑफ मीम्स? आर दे सेफ? आर दे पुटिंग द मैसेज?
6: आई से दिस इज वेरी रॉन्ग बाय कांग्रेस, बिकॉज़ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स डेटा, लाइक दिस इज नॉट द बीजेपी का डेटा, दिस इज डेटा व्हिच इज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को क्वेश्चन करना इज जनरली वेरी वेरी रॉन्ग। अगर ये डेटा गलत होता तो वर्ल्ड बैंक, IMF, 85 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के पीछे लग जाती कि आपकी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी आप दिखाना चाह रहे हो। सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को क्वेश्चन करना इज वेरी, आई डोंट नो इफ इट इज लीगल, बट दिस इज वेरी बैड।
2: ओके, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ द काइंड ऑफ मैसेजिंग? आर यू ओके विद दीज मीम्स? बिकॉज एवरीवन हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट दिमागी नक्सल एंड द यूज ऑफ गन्स ओवर देयर, बट ये चाय बियर ठीक लग रहा है?
6: मतलब इसमें कुछ इशू नहीं है, मतलब इट्स लाइक ये तो मीम मटीरियल है, मीम मटीरियल में वो कुछ भी डाल सकते हैं, बट जो मैसेज आ रहा है मैसेज जो कन्वे हो रहा है वो गलत है।
2: मैसेज भी गलत है,
6: मतलब वही, क्योंकि दैट इज इंडिया का डेटा।
3: चाय को बियर टाइप का।
7: द क्वेश्चन लाइज हियर सर, बार बार पूछ रहे हैं, डिफाइन दिमागी नक्सल, डिफाइन दिमागी नक्सल। सर यू डिफाइंड अ भक्त, यू डिफाइंड अनंत भक्त।
8: हु
7: इज अ भक्त?
8: आई विल टेल यू,
7: बिकॉज़ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू सर, लेट मी फिनिश सर। आई फील दैट यू शुड वर्क हार्डर ऑन द मैसेंजर देन यू वर्क ऑन द मैसेज। मियरली बिकॉज़ द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड समबडी अ दिमागी नक्सल फ्रॉम द रेड फोर्ट is the reason why we are debating on dimagi naxal. Similarly, the term cockroach was coined by the Chief Justice of India. That led to...
2: What do you mean by you should work harder on the messenger rather than the message?
7: Yes, so the messenger is Prime Minister. That is why we are actually debating on Naxalwad and this. If any of us have talked about any person, have told him that, okay, you are a dimagi naxal, it wouldn't have made any
5: obviously
7: difference.
5: Yeah, you are, but right. Your analogy is dangerous, yeah, because the Chief Justice of

0: India said cockroach.
1: Yeah.
0: The cockroaches came together and the education minister resigned. Prime minister said Dimagi Naksal. Dimagi Naksal should come together. Who's resigning?
2: Anish, who knows, somebody's resignation is now going to be sought on the basis of
0: the Dimagi. The point Naksal is you hurl an abuse and we will make it into a joke and that joke will then be on you.
2: Okay, the joke is going to be eventually on the BJP if they persist with this, Dr. Ranganathan.
3: No, first of all, I don't know why in this age of social media and Gen Z, Anish consistently feels that he will not be fact-checked. Can I please ask Anish, when he so, in a blasé fashion says this cockroach was used, what was exactly the Chief Justice of India's remark on cockroaches? Please tell me. I want to hear it from the horse's mouth. Tell me.
0: Dr. Ranganathan, I agree with you completely. The problem is that the Chief Justice at that moment had said that there were certain petitioners over there who were lazy and unemployed. The poor guy who was filing the petition unfortunately should not have filed the petition, but the tone and tenor of the Chief Justice was wrong.
3: Achha, ab tone and tenor.
0: Par abhi uska mazak udaya jayega. Out of context, aap Rahul Gandhi ke statement ko bhi lete ho. To Chief Justice ke statement mein out of context kisi ne le liya. To fir kya dikkat hai?
3: Aap le rahe ho. आप ले रहे हो.
0: मैं देश का पूरा युवा पब्लिक ले रहा है भाई.
4: आनंद जी, देश खड़ा हो गया था जंतर मंतर पे उस एक शब्द कॉकरोच पे.
1: सारे दिमागी नक्सल आ जाएं एक बार.
4: ये सारे बच्चे बैठे हैं,
1: सारे दिमागी नक्सल सामने.
2: यस, वी कैन हियर यू.
3: Yes, that is what I'm trying. I said this half an hour ago. The fact is that all the problems that the brilliant Gen Zs are highlighting have previously been highlighted by every segment age-wise of the population. We have been shouting hoarse about the bad condition of roads, about the subsidy, the freebies. We've been shouting hoarse about the school system. We've been shouting hoarse about the reason why the education minister must resign. Did the government listen to us? No, they didn't. When they heard Gen Z was because they came on to the streets. So what is the message that is going on? Not that some social media meme would work or some communication one way or two way would work. That anarchy would work. That is the message. Accept it.
4: Not anarchy.
2: Okay. I want to go to a few more people over here who want to ask questions. Yes. What's your point of view, young lady? Yes.
5: Hello, my name is Ananya. I wanted to ask, how do you want to set us a narrative? If we go for speeches, we are ignored. If we go for protests, we are criticized. If we go memes, we are immature. How do you want to set us a narrative? How do you want to how do you want us to ask the questions to the Prime Minister?
4: You are not supposed to ask questions. Don't you know that?
2: Then what is the point of the government? In India, you can ask questions of the Prime Minister. You are mistaking it for other countries.
4: You will be declared as a Dimagi Naksal because you ask questions.
2: Yes. How do you expect the young people then?
1: Padmaja, Bharat mein social media par koi rok nahi hai. यूथ जो मन में आता है वो सवाल पूछता है, जो मन में आता है वो मीम बनाता है, जहां मन करता है वहां प्रदर्शन करता है. और अगर उसके बाद
4: 15 साल की बच्ची घर में घुस करके उससे माफी मंगवाई और उसने फिर से सोशल मीडिया पे डाला है
1: विवेक जी,
4: जो खाना खा लो आई एम स्टिल देयर.
1: मत कीजिए,
4: ये है फ्रीडम.
1: नहीं नहीं, मत कीजिए ऐसे बच्चे, ऐसे गाली देने को मत जस्टिफाई
2: कीजिए. सवाल पूछने की आजादी है
1: ना? नहीं, गाली देने की नहीं होनी चाहिए. इस तरह की गालियां देने की आजादी होनी चाहिए.
4: नहीं होनी चाहिए
1: बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. और अगर उसको रियलाइज अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर विवेक जैसे लोग उनको अपने साथ
4: देखिए. सुनिए सुनिए,
1: उस तरह की गालीबाजी, गालीबाजी को आप ना जस्टिफाई.
4: ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. लड़का दे चलेगा, लड़की ने जंतर मंतर
1: चलेगा
4: कमाल को इनके पेट में दर्द.
1: लड़का भी क्यों देगा?
4: लड़की ने गाली देनी तो इनके पेट में दर्द. लड़का देगा कोई
1: मेरे लिए गाली मुद्दा, आपके लिए
2: I think the point you are making here is more of a moral point, but the government of India cannot stop anyone from saying what they want on social media. तो बात क्या, बात यहां पर पॉलिटिकल
4: ऑफ कर दिया, क्या बात है, घर में पॉलिटिकल हो गया, अरे लोग उसके घर में गए आके कहती है कि हो गया, उसकी मदर कहती है कि पीएम, और उसके बाद वो आके कह रही नहीं नहीं मेरा डर खत्म हो गया, ठीक है भाई गाली दो, कौन मना करता है,
2: एंड दैट यंग गर्ल, एंड दैट यंग गर्ल हैज द राइट एंड शी शुड यूज हर लीगल रिकॉर्स टू फाइल केसेस अगेंस्ट पीपल हु आर अब्यूजिंग,
4: शी हैज द
2: लेट हिम आल्सो स्पीक, नाउ लेट हिम आल्सो स्पीक।
0: आई हैव वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने कहा है कि गाली गलौज देना गलत है, डेथ थ्रेट देना, रेप थ्रेट देना, उसके घर पे गुंडे भेजना, ये गलत नहीं है,
4: बिल्कुल गलत है,
0: पर एक्शन किसके खिलाफ ली जाती है, लड़की खिलाफ, आठ लोग जो घर पे पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन ली गई है या नहीं ली गई है, डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट दी गई है उनके खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है, जयपुर डायलॉग के फाउंडर के खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है, क्या चल रहा है सर?
2: You know what we've actually seen in play over here is how social media can end up being a very very dangerous and double-edged sword. Look what happened. Yes, that young lady, for whatever reason, irrespective of whatever she said, she went very viral and she went viral voluntarily. Unfortunately, though, this huge blowback happened and whoever is traumatizing her, threatening her, should face the heavy hand of the law. 30 seconds, Dr. Ranganathan. Then I want to take the last set of questions. Yes.
3: Yeah, sorry to use a Gen Z meme. कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ अपन ही सच बोलता है. You know, when Vivek Srivastav says कि गाली देने में क्या problem है, he was the one who until a few weeks ago was defending the execrable गाली that Udayanidhi Stalin made against Trisha Shah and the Chief Minister of तब कह रहे थे सारे सब ठीक है गाली तो दी है. And as far as Harshvardhan ji is concerned, he is totally wrong when he says गाली should be prosecuted. Who decides what is a गाली, what is not? Yes. अगर मैं कल आपको कहूँ कि हिंदू सबसे घटिया जानवर है, आप कहेंगे इसको बैन कर दो, आप खुद
2: यू नो, आई लव विवेक श्रीवास्तव, दिस इज टिपिकल लेफ्ट बिहेवियर, व्हेन द क्वेश्चन वाज टू हिम ही वाज क्वाइट एज अ माउस, द मोमेंट द कैनन वाज टर्न टू हर्षवर्धन जी ही रिस्पोंडेड विद एन एम्फैटिक यस, दैट इज व्हेयर ऑल द एम्फसिस वाज देयर, क्योंकि जरूरी है, ओनली 30 सेकंड्स, यस,
1: मैं फिर कह रहा हूं कोई भी लड़का या लड़की इस तरह की गालियां पब्लिकली दे किसी भी मूवमेंट में, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता, और मैं इसके अरे बीच में नहीं, मैं हूं मोरल पुलिस अपने लिए, आप मत होइए
4: बच्चे,
1: आप मत होइए
4: बच्चे, हर स्कूल में,
1: लेकिन मैंने कतई ये नहीं कहा कि उसे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, मैंने उसी सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर उस बच्ची ने माफी मांग ली तो ये बात खत्म कर दी जानी चाहिए, लेकिन उसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसका डर खत्म हो गया, गाली देके डर खत्म हो गया, ये तो कौन सी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है।
2: Okay, now I come to the question, can social media end up being a double-edged sword, not just for this young lady, but even for the political parties? ठीक है, आपने किसी और पे तो meme बना दिया, but then the shoe will be on the other foot also, ना? वो भी आप पे बहुत खतरनाक meme बना सकते हैं।
5: Exactly. My name is Rama Shukla. पहले तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी, सर ने मेंशन किया था स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में, देन सर ने बोला, काउंटर किया कि ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोले जाते हैं, उनको बुलवाए जाते हैं, बट सर
1: थोड़ा मैं फैक्ट चेक कर दूं, मैंने सोशल मीडिया पर वो बात कही थी, स्वतंत्र को तो मैं जानता भी नहीं हूं क्या ये बोल रहे हैं, मैं उसके लिहाज मैंने कहा था सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे आईटी सेल के ट्रोल्स हैं, आईटी सेल कांग्रेस से जुड़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह की कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, मैं करेक्ट कर,
5: तो सर मैं आपको
1: कोई उसका लेना देना नहीं, कौन है मैं जानता
5: नहीं, से देखते हैं सर, हमें बताएं हमें क्या बोला जाता है, ऐसे देश में सृजन कैसे होगा जब जहां पर इनह्यूमन जैसे वर्ड जैसे दिमागी नक्सल को यूज करा जाता है, राइट, हमें कौन अकाउंटेबिलिटी देगा सर? आप यहां पे बैठे, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, एक बच्चा भारत में पैदा हुआ है और अभी वो पैदा ही हुआ है, उसे नहीं पता कि ये नक्सल शब्द है क्या, उसे सिखाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्ता से उसे सिखाया जा रहा है जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं,
1: ये आपने कैसे कह दिया कि उस बच्चे को ये सिखाया जा रहा है? अगर कोई एंटी इंडिया है, अगर कोई नक्सलियों के साथ खड़ा है, अगर कोई इस देश के आदिवासियों के अधिकारों पर हमला कर रहा है, तो उसके बारे में देश के बच्चों को नहीं जानना चाहिए? आप कैसी बात कर रही हैं? और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम है देश के लिए जो भी थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करना।
5: सर, व्हाट अबाउट मणिपुर? सर,
1: कहा मुझे लगता है सही सही उसको संदर्भों में समझने की जरूरत है, जब आप ये कहते हैं बच्चे को, वो बच्चे को नहीं सिखाया जा रहा है, जो भी समझने लायक लोग हैं उनका दिमागी नक्सल की पहचान कराई जा रही है,
4: बच्चे को धमकाया जा रहा है,
5: इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओनली 10 सेकंड, इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको डिग्निटी के साथ मेंटेन करना क्यों नहीं सिखाया जा रहा है सर? एक पार्टी दूसरे पार्टी पर वार क्यों कर रहा है, क्या सिखाया जा रहा है?
4: फासिस्ट है, और आप जो है ज्यादा सवाल पूछेंगी तो आप दिमागी नक्सल हैं, और आपको प्राइम मिनिस्टर समझा नहीं रहे थे, धमका रहे थे।
2: ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग,
1: फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, फासिस्ट फ्रॉम चाइना,
2: Okay. When we're talking about social media labeling, again, like we said in the beginning, it can be a double-edged sword. If you coin things like Andhbhakt, Gomutra drinkers, Dimagi Naksal, then eventually it's going to cut both ways. Yes, 30 seconds, ma'am, ask your question.
6: Hi, I'm Nivedita, and I have a question for sir. You said ki 15 saal ki bachchi usne gaali de diya, chhod do usko. So is it okay for a teenager or anyone who is under the legal age to cuss at the PM? Because wo wahan protest mein gayi, she was not with her parents or someone who is, you know, above the legal age. So is it fine ki hum PM ko aisi gaali de de, and then anyone would be free to do anything and say whatever they want to, right?
4: main badi practical baat bolunga, log agree kare na kare, school ke bacche aapas mein gaaliyan dete hain, ha ki na?
6: That is fine, sir.
4: Just hold on, let me answer. कॉलेज के बच्चे आपस में गालियां देते हैं, खासकर बॉयज, हाँ कि ना? हॉस्टल में गालियां चलती हैं, हाँ कि ना? देते हैं ना? एक पंद्रह साल, एक मिनट, एक मिनट,
7: लेकिन जवाब नहाते हैं,
4: हाँ कि ना?
7: विवेक श्रीवास्तव बाथरूम में बिना कपड़ों के नहाते हैं, हाँ कि ना?
4: सुनिए, अब
7: कैसी बात कर रहे हैं?
4: देखिए कितना डर गए, ये डर लगता है, देखिए ये होता है डर,
7: समझा रहे?
4: इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डर, इसको कहते हैं मॉरल पुलिस।
7: आप
4: क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी,
7: कभी भी पॉजिटिव नैरेटिव पर
6: उनको अगर पीएम के बारे में कुछ बोलना था, दैट शी डजंट लाइक द पीएम, शी कुड हैव सेड इट, बट यूजिंग दोज वर्ड्स, दैट वाज नॉट करेक्ट।
2: ओके, आई वांट टू वेरी वेरी क्विकली बिफोर वी गो डाउन दिस रोड, 30 सेकंड्स ओनली अनीश, एंड आई वांट टू रियली show you one last video. Yes, 30 seconds, go on, Anish.
0: The simple answer is that when BJP MPs do it, it's okay. When the abuse goes towards the Prime Minister, it's not okay.
6: I'm not saying about a PM or...
0: The problem is, today you have a defamation case that can be filed against somebody for hurling abuses. You cannot send goons to their house for filing abuses.
6: Definitely, I agree with you, sir. We can take action for that as well.
0: But why is that action now? Can the BJP... Now, if there is somebody who is abusing the Prime Minister, and you abuse the Prime Minister hypothetically, and somebody shows up to your house,
6: yes, sir,
0: assuming they are BJP supporters,
6: it's not, we should take action.
0: Can the BJP wash its hands,
6: sir,
0: off of their supporters?
6: I am not with BJP,
0: no,
6: or
0: but
6: with
0: I'm saying
6: anyone.
0: Then file a
6: I'm
0: case,
6: just saying,
0: no?
6: That he is elder to us. He is the
0: file
6: PM
0: case,
6: of our country.
0: File
6: he
0: a case. The court will decide whether it's defamation or not. You
6: okay,
0: are not the law. I am not the law. Nobody is the law.
7: PM ne kisi ko nahi bheja, lekin Sharad Pawar ke upar tippani karne par log chale gaye the gunde maarne.
6: And also,
7: Navy veteran ka sar phod diya tha.
0: Aap dekho.
7: Ketki chitale jail mein bhej diya tha.
0: Conveniently.
7: Ek nahi. Jaane kitne aise udaharan.
0: Jab Pawar sahab ने एक शब्द नहीं कहा केसी चितवे पर, शरद पवार पे आप नाम करोगे, जब
7: आप
0: इनके आदमी लोगों का सर खोल रहे हैं, आप
7: जेल से नहीं छुड़ाए
2: हो। आई थिंक सर्टेन रेड लाइन शुड नेवर बी क्रॉस्ड, वेदर इट्स इन रियल लाइफ और ऑन सोशल मीडिया। वन, इट इज नॉट ओके टू थ्रेटन वायलेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ हु दैट पर्सन इज, ईदर to somebody who holds a constitutional post or somebody who is simply a civilian. But I want to end by showing you

0: क्या लाइक इट्स क्रिएटिविटी, अगर एक कर रहा है तो अगर दूसरा करना चाहता है अगर उससे
1: अब ये सेल्फी वीडियो ही क्यों, नॉर्मल वीडियो में आप नहीं देखते क्या बोल रहे हैं?
0: अरे वो इनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में, हम ज्यादा नहीं कहते।
1: क्या लग रहा है?
2: एवरी पर्सन यूजेस हिज कैमरा बेसिकली। सो इन्होंने इफ ये जेंजिस के साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे या फिर क्या था ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि उनको उनका मन हुआ तो उन्होंने कर दिया।
1: पर आपको पसंद आया कि नहीं भाई जेंजी?
2: हमें पसंद की बात नहीं, हम पहले अच्छे से फैक्ट चेक करेंगे कि रियल है या नहीं, और फिर अच्छे से बात है इनकी या नहीं, उसके बाद देखा जाए।
1: ऑलराइट, आई थिंक
3: ट्रेंड में शामिल होना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं।
1: ओके, सो देयर
3: एंगल विल गेट बेटर ओवर टाइम।
1: ओके, 10 सेकंड्स ओनली डॉक्टर रंगनाथन।
4: Yes, please realize that if BJP forwards one Yogi Adityanath video, then the BJP forwards 20 Rahul Gandhi videos.
1: All right, I'm going to leave it at that. But I think what this young man said is very, very important. Sure, you might think that they are jumping onto the trend by making this selfie video. But remember, this Gen Z that you're trying to connect with is also going to examine your message, not just the medium, not just the format, but will examine the content of your message and see whether that is appealing not just to their lingo, but also to their sensibility. Thanks very much as always. It's always good to see that you are not here to be fooled. Thanks very much to our guests also joining us today. And remember, when it really matters, as always, the buck stops here on the People's Sansad.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा।

0: Right there, it's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not on your side.
1: We are more than 90 people here, so we are trying best.
0: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
2: The devastating floods that have struck Nepal have left behind scenes of heartbreaking destruction. Lives have been lost, families are grieving, many are still waiting desperately for news of those they love. Homes and livelihoods have been swept away, and the full measure of this tragedy is still unfolding.
3: NDTV has reached the ground zero. We are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit. Situation is grim and it is only going to get tougher in next few hours. The arrangements are here being made for the rescue mission.
4: This is the under construction dam, retaining wall there, collapsed.
3: Biggest marketplace of this area. Now, this is what remains of that biggest bazaar of this area.
5: Our ladka aur hamari patni chali gayi.
4: More than 24 hours, the restoration work is still going on.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, Sandy Howard.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.
8: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless.
6: Welcome back, you're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, and we are tracking all the stories that matter. Lost man of free with first headlines. Amid raging politics over India's quarter one GDP growth of 7.8%, Prime Minister Modi hails numbers, calls it India's growth story despite global uncertainties. Controversy in Kerala after Chief Minister's post condemning Grand Mufti's regressive remarks taken down. Congress calls it Facebook error. BJP accuses Satish of appeasement politics. Vijay vs. Udhay Nidhi in Tamil Nadu Assembly. DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked, action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revanth Reddy. Writes to Kharge, alleges political marginalization under Revanth Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1200. And Well, you're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that, "I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
9: जी नमस्कार. आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है. अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा. जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूँगा.
10: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो. और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे. वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है. चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो.
11: Both Congress and Pakistan have got sleepless nights. जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, यह बयान यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है. जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे.
12: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी.
13: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी. अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है. और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है.
14: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके. तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता, मींस द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी, दोनों बढ़ेगी.
6: Well, the Shuddhikaran row is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action.

0: He says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
1: Kash Nadda ji ko ek patr likhkar yaad dilaya ki 25 din ke baad bhi unke dwara Raj Sabha mein sarkar ki or se दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीजें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीजें उनके सामने लाया हूं पत्र लिखकर
2: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ़ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ़ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बॉटलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
0: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
3: Duniya ke kai hisson mein संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
4: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए यह सामान, सच्चाई देश की हकीकत यह है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% GDP है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
5: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वाज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड, बट आई डोंट नो वेयर दे डू नॉट फाइंड people employed, the naysayers who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left.

0: and the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
1: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है. आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए. तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए. और यहाँ हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है. तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है.
2: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Hwang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
3: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
2: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
4: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है. ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए. आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तुरंत रोकना चाहिए.
5: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं. मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए. भाई एसआईआर के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए, ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया. आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा? 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने. फिर भाई आप राघव चड्डा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने वीआईपीओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है.
2: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
6: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில்

0: Well, you're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that, "I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
1: जी नमस्कार, आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा, मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा, तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूँगा।
2: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो, चाहे वो पैसों की लूट हो। और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे। वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है। चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो।
3: Both Congress and Pakistan have got sleepless nights. जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है। जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
4: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी। जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
5: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी, उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है, उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था, कोई फर्क नहीं है।
6: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है, वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है, ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता, मींस द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी, दोनों बढ़ेगी।
0: Well, the Shuddhikaran row is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
7: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
8: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
0: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
9: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
10: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
11: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
12: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? GDP बड़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है. आज आप देखिए GDP तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए. तो मैं तो बोला था ना कि भाई BJP वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए. और ये हालत तो ये, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है. तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है.
0: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
13: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. And I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
0: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
14: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है, और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है. ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए. आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तुरंत रोकना चाहिए.
15: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं. मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए. भाई SIR के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए, ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया. आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा? 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने. फिर भाई आप राघव चड्डा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने VIPओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है.
0: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
16: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து
17: அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ₹1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
18: He had not got a majority, simple absolute majority in Tamil Nadu itself. He is relying on the Congress, the Communist parties, VCK and IUML. How can he become Prime Minister? If he, once we had, were asking for separate Tamil Nadu, if Vijay gets separate Tamil Nadu, he can become the Prime Minister.
19: Despite resignation threats by Congress ministers, the TVK simply refuses to accept Rahul Gandhi's leadership nationally. The Congress party meekly says that the TVK ministers and MLAs are in fan club mode, even after scathing repeated rejections of Rahul Gandhi's failed leadership by TVK. The Congress party still continues to be in a cabinet. They just issue empty threats and warnings. What is preventing the Congress party from withdrawing support?
20: This is not a demand. You have to identify the words. You have to clearly mention the words. This is not a demand. It is about the wish. There is a well and wish different from demand. There is no demand is there. There is a wish is there for every individual. Every individual having some unique knowledge, unique satisfaction, unique thoughts. They are expressing their wishes, that's it.
0: Sting on stories from Tamil Nadu, political face-off is brewing in Tamil Nadu with leader of opposition Udayanidhi Stalin firing fresh salvos at the Vijay Sarkar over the rise in murders and sexual crimes in the state. Udayanidhi has slammed the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, accusing his government of reducing serious crimes to a matter of personal discipline and questioning why no action has been taken against the TVK leaders. But Chief Minister Vijay is now ready with a counter. He says Monday is the day that he answers back, promising to respond to all questions. Taking a swipe at the opposition, Vijay also said he hopes that they will not run when the answers come.
21: தினமும் நியூஸ் பேப்பர் திறந்து பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் தினமும் செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. கறிக்கடையில கூட இந்த அளவுக்கு வெட்ட மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தினசரி வெட்டுக்குத்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நகைக்காக கொலை, போதைப் பொருள் விற்பனையை அம்பலப்படுத்தினா கொலை, மது போதையில கொலைன்னு கொலை நடக்காத நாளே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இல்லை. சென்ற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் 9 பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ஆட்சி அமைச்ச 116 நாட்களில் 10 ஆணவ கொலை நடந்திருக்கு. அதில் ஒன்றுக்கு கூட முதலமைச்சர்கள் வாய் திறக்கலை.
17: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர் கேட்குற மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் கேட்குற எல்லா கேள்விக்கும் அதுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை நான் மண்டே வந்து நான் பேசுகிறேன். நான் இங்கே இல்லைனா கூட யார் யார் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்றது எனக்கு வந்துடும். எல்லாத்துக்கும் நான் தெளிவான பதில் சொல்கிறேன். உங்கள் சார்பாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் ஒன்று கேட்குறேன். யாரும் எந்திரிச்சு ஓடிடக்கூடாது.
0: In other news, 5 years after becoming the face of one of India's most tense military confrontations with Pakistan, Group Captain Abhinandan Vartaman is now taking to the skies again, this time as a commercial pilot. The former fighter pilot and Veer Chakra awardee has now taken premature retirement from the Indian Air Force after 22 years of service and has reportedly joined Goa-based regional airline Fly 91. Here's more.
22: From the cockpit of a MiG-21 Bison to the cockpit of a commercial aircraft, Abhinandan Vartaman, the Indian fighter pilot who was captured by Pakistan in 2019, became the defining image of the India-Pakistan military crisis, is embarking on a new chapter in aviation. The former group captain has reportedly taken premature retirement from the Indian Air Force after 22 years of relentless service. Sources cited by news agency PTI say Vartman joined Goa-based regional airline Fly 91 in August as a commercial pilot. Vartman's name is etched in India's military history for what happened in February 2019. After the Pulwama terror attack killed 40 CRPF personnel, India carried out airstrikes on a Jaish-e-Mohammed training camp in Balakot.

0: Alberto Pulido.
1: The devastating floods that have struck Nepal have left behind scenes of heartbreaking destruction. Lives have been lost, families are grieving, many are still waiting desperately for news of those they love. Homes and livelihoods have been swept away, and the full measure of this tragedy is still unfolding.
2: NDTV has reached the ground zero. We are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit.
3: Situation is grim and it is only going to get tougher in next few hours.
2: The arrangements are here being made for the rescue mission.
4: This is the under construction dam retaining wall there collapsed.
2: Biggest marketplace of this area. Now this is what remains of that biggest bazaar of this area.
5: Hamara ladka aur hamari patni chali gayi.
4: More than 24 hours the restoration work is still going on.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
6: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.
8: New rules of engagement. Ambitions crossing borders.
6: Welcome back. You're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, and we are tracking all the stories that matter. Lost man of few with first headlines. Amid raging politics over India's quarter one GDP growth of 7.8%, Prime Minister Modi hails numbers, calls it India's growth story despite global uncertainties. Controversy in Kerala after Chief Minister's post condemning Grand Mufti's regressive remarks taken down. Congress calls it Facebook error. BJP accuses Satishan of appeasement politics. Vijay versus Udayanidhi in Tamil Nadu Assembly. DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked. Action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revanth Reddy. Writes to Kharge, alleges political marginalization under Revanth Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1,200. And well, we're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here. The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
9: जी नमस्कार. आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है. और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहाँ पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहाँ तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं CEO के रूप में टेक ओवर करूँगा।
0: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो। और अगर ऑफिसर ही करना है, IAS IPS ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे। वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि RSS को ये मंदिर चाहिए, RSS को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है। चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो।
10: बोथ कांग्रेस एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्लीपलेस नाइट्स। जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है। जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
11: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, SIT ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, SIT के बाद FIR दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी।
12: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
13: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रख कर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता, मींस द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी, दोनों बढ़ेगी।
6: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who perform the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
14: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकारी सॉरी सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
15: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ़ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
6: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
16: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
17: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
18: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
19: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव थे कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
6: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyun-Sin Hwang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
20: India is one of the world's leading IT industries. And

0: ministers, his engagement went up by 289%. That of Rahul Gandhi, he's also been very aggressive during Chhatro Ki Goonj, his engagement went up by 180%, and the Congress's views went up by 43%. BJP engagement went up by 37%. So let's get started by asking the root question. Who has got their social media game together? I'll start with you, Anish, as the youngest of the lot.
1: Listen, I think the easy answer here is that young people have gotten their social media game together. Suddenly, the focus is on younger people. Mm-hmm. Politicians across party lines are engaging with younger people. But the medium must be differentiated from the message. Go look at the comments under the Prime Minister's most recent post. Mm-hmm. You cannot celebrate 7.8% growth when graduate youth unemployment stands at almost 25%. You cannot celebrate 7.8% growth when everybody is also seeing that on the 31st of August, you had 8,000 crores worth of FIIs leaving the country. So now, the medium is certainly important. We're waiting for the message to be gotten right.
0: Okay, so you're saying that he's got greater engagement, but that doesn't necessarily mean positive engagement.
1: I think he should be reading the comments.
0: All right, Dr. Ranganathan, have you been reading the comments? Who's got their game together?
2: It's very good evening, Padmaja, and good evening to my fellow panelists. First of all, I take offense to being clubbed not in the youth by my good friend Anish.
1: I never did not club you in the youth. You're 100% in the youth.
0: I said Anish is youngest of the lot, but everyone here is youthful, if not youth.
2: No, but thank you for having me. It's very difficult to say, you know, which side, opposition or the ruling dispensation, wherever they may be, in non-BJP ruled states, that's what you would count them, have up. I think all of them have constantly been worried about their social media game. Hmm. But I think what really matters is how much do people trust more than they engage. I mean, I have watched or sat through programs. They have engaged me, but what they've said is absolute rubbish and they've frustrated me. It's a bit like in the 90s when you would read a newspaper and you had no avenue to protest other than write a letter to the editor, which would never be published. So I think those two things, I think Anish is right to some extent. You can get engagements if you want through clickbait or through, there are hundreds of processes and mechanisms by which you can draw an audience, but to have the audience trust you is a totally different matter.
0: Okay, and so who's done it better?
2: No one. That's the whole point. No one.
0: Why is
2: no
0: that?
2: No political party has garnered the kind of trust that people should be trusting them, because all of them lie more than they tell the truth. That's the fact.
0: Okay, but at least in engagement, who's better at catching eyeballs according to Vivek Srivastava?
3: You see, I personally feel I agree with him to some extent that it's the other way around. Earlier it is the Congress party before independence. Gandhi ji rasta dikhayenge, log chalenge. Today it's absolutely the reverse. It is the Gen Z which says these are the issues, and every political party tries to echo that.
0: Achha, theek hai, Gen Z has won the day, but politically, who's managed to read their mind better?
3: No, I'm just telling you. So now what happens is it's a very fast-moving kind of a medium. Ek event hua Jantar Mantar pe. उसके जो प्रोटेस्टर्स हैं अचानक सडनली यू सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड इट इंक्रीजेस इट आउट सो कंसिस्टेंसी ऑफ दिस एंड देन विल इट ट्रांसलेट इनटू द वोट्स विल इट ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट विल इट ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर द आइडियोलॉजी दैट दैट पार्टी स्टैंड्स फॉर दीज आर द बिग क्वेश्चंस एंड देन आई अग्री विद डॉक्टर रंगनाथन आई वॉच हिम एवरी डे But I'm not very sure if I agree with him. और मेरा जो degree of frustration है वो कितना होता है वो भी जानते हैं मेरे दोस्त हैं तो लेकिन अब सुनना पड़ता है भाई आते हैं अच्छे स्पीकर हैं तो हम
0: विवेक श्रीवास्तव का frustration ये है कि कहीं भी ratings में engagement में left party है ही नहीं वैसे left party YouTube पे है और is it too capitalistic for you
3: भाई देखिए अब
0: आप थोड़ा awkward हो जाएगा ना you're like we are number one on Twitter but Twitter is owned by Elon Musk ये तो awkward हो गया
3: नहीं नहीं see it's even if the media is owned by anyone you see you must go you must try you must talk But today, it is the public, especially the younger generation, they are questioning. And I tell you, I'll give them some fact. You give them some fact. Harshvardhan ji can give them some fact. Ye bachche sunne wale nahi hai.
0: Okay.
3: Bolenge pehle double check karenge, Google
0: okay,
3: pe jayenge, fir baat karenge.
0: 30 seconds, Dr. Ranganathan, then Harshvardhan ji, yes.
2: No, thank you. Thank you for the compliment as always, Vivek. And Padmaja, Vivek is right. I also listen to him whenever I want China's point of view. He's the first person I turn to. But, you know, when I think we are going overboard when we talk about ab sab Gen Z ki sun rahe hain. Are bhai, hamari nahi suni. So let's not talk about that the powers that be are listening. They were ignorant. They did not act. And they were, for example, told in the case of cockroaches, Cockroach Janata Party, this is the issue, why have you ignored it? There were others who were also telling them, don't ignore it. They kept on ignoring. Doesn't mean they're listening to the people.
0: My question today is slightly different. It's not about whether people are forced to listen to Gen Z. It is about who Gen Z is listening to. Now, every party, without a doubt, is trying to reach out to this demographic. Mera seedha sa sawal hai ki bhai, किसकी लिंगो किसका भाषा इज अपीलिंग मोर टू Gen Z व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया बिकॉज क्लियरली दैट्स द थ्रस्ट.
4: परमजा जी, सबसे पहले तो ये कि कॉकरोचेज एंड कम्युनिस्ट आर सर्वाइविंग वेरी वेल, तो इसलिए ये कहना कि अभी ये नहीं रह गए ये ठीक नहीं होगा. लेकिन बड़ा सवाल दूसरा है, क्या हम सोशल मीडिया पर जो आईबॉल कैचिंग देख रहे हैं, जो क्लिकबेट चल रहा है, जो रिपोस्ट है, वो क्या सचमुच इश्यूज को लेकर है? किस पर हम लोग, किस रील पर हम लोग ज्यादा देर तक टिके रह रहे हैं? क्या वो इश्यूज का
0: नैरेटिव बिल्डिंग है ना? इश्यूज अलग है. पहले आप एक नैरेटिव चला रहे हैं कि कौन आगे है.
4: नहीं नहीं, कौन ज्यादा अपील कर रहा है. आपने नंबर्स शुरू में बताए, जब नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर आए थे तो वो अपने इश्यूज को लेकर आए थे, वो अपनी इमेज बिल्डिंग को लेकर आए थे. उनके पास टेक्स्ट फॉर्मेट होता था, उनके पास फैक्ट होता था, उनके पास पाई चार्ट होता था, उस पर वो इंगेज करते थे. डिफरेंस जो अभी वो समझना होगा. फिर ये जिसको हम कह रहे हैं कि यूथ आ गया और कम उम्र के बच्चे आए, इंस्टा वाले आ गए, तो ये 15 सेकेंड रील पर आ गए. अब अभी जो नई सोशल मीडिया टीम बीजेपी की आई, क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत अग्रेसिव थी, जो सोशल मीडिया टीम थी कमाल का काम कर रही थी. क्यों? क्योंकि हर बात पे वो सवाल पूछ रहे थे. जब आप हर बात पे सवाल पूछते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आईबॉल्स ज्यादा आपको मिलते हैं. लेकिन क्या कोई नैरेटिव क्रिएट हो रहा था? क्या नहीं हो रहा था? क्योंकि नैरेटिव अगर क्रिएट होता तो इतने इलेक्शन के रिजल्ट जिसमें यूथ लगातार वोट कर रहा था कुछ दिखता नहीं.
0: पर उसमें कुछ तो बदलाव होगा ना.
4: मैं उसी पर आ रहा. बीजेपी क्या रिएक्ट कर रही है?
0: मैं आपको बताती हूं, नैरेटिव की बात है भाई. अभी तक आपका मींस ऑफ कम्युनिकेशन था मन की बात, कि सब बैठ करके सोफा पे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं. नाउ यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट हैव अ वन वे मन की बात. नाउ पीपल वांट टू एंगेज विद on Instagram, they want to go immediately and comment under and say हमें ये पसंद नहीं आया.
4: I don't buy this. मैं उसी पर आ रहा हूँ. आप में से पता नहीं किसी ने AK-47 कभी देखी है कि नहीं देखी. मैंने देखी है. तो उसमें एक गनर से मैंने पूछा तो उसमें जानते हैं क्या है कि एक होता है A लिखा होता है, एक S लिखा होता है. सिंगल बुलेट फायर करनी हो तो यानी समझदारी के साथ करना है. और A जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी आपने एक बार कर दिया तर जितनी. ये सोशल मीडिया ऑटोमेटिक हो गया है. यानी गोली कहां लग रही है, कौन सा नैरेटिव बन रहा है, ये किसी को नहीं पता. गोलियां चल रही हैं, आईबॉल्स कैच हो रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं. सवाल ये है कि जो नई बीजेपी की सोशल मीडिया टीम आई, उसने एकदम देशज में कहें तो गर्दा उड़ा दिया है. बहुत आईबॉल मिल रहे हैं एकदम से, बीजेपी गोवा, बीजेपी महाराष्ट्र, तो बीजेपी इजराइल वाला भी अकाउंट से आता है. सवाल ये, क्या सचमुच नैरेटिव पर बात हो रही? मैं ये मानता हूं पार्टीज नैरेटिव पर सोशल मीडिया पर ना तो बात कर रहे हैं, ना एंगेज कर रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली जिनको हम यूथ कह रहे हैं वो भी नैरेटिव पर, इश्यूज पर उस तरह से बात नहीं कर रहे.
0: ओके, लेट मी डू अ क्विक स्नैप पोल over here. How many people think that the BJP has got their social media mojo back? Thoda bahut? Kyun?
5: Because now PM is also like coming on reels and he's becoming a reel creator. I mean,
0: creating. But does it work? Do you want your prime minister to be a reel creator or you want him to be a prime minister?
5: Like, I don't know.
0: You don't know? Arre bhai, itna outreach kiya, uske baad if you don't know, that is some serious worry. Yes, who do you think has got their game
6: together?
0: Good
6: evening. I do not say ki kisi ke paas koi apna mojo hai ya nahi hai. I'd say ki saying ki prime minister ko reel banana chahiye, nahi banana chahiye, it's up to him. He's prime minister, he's doing his prime ministerial duties as well. So I don't mind that. The thing is that aaj ki date mein average youth ka screen time is more than 6.5 hours. That is concerning. To say that 25% of people are youth are unemployed, I mean, it is a factor. This 6.5 hours is a factor. If you believe it or not, I do not care, but like, this is a factor. Secondly, get some grass, guys. Go touch some grass.
0: भाई ये बता भी दिए, व्हाट इज सपोज्ड टू मीन? ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को मुझे समझ में ही नहीं आया, मतलब क्या होता है टच सम ग्रास का?
6: गेट आउटसाइड ऑफ योर हाउसेस, गेट आउटसाइड योर होम्स, गेट आउट ऑफ योर स्क्रीन्स.
3: देखो स्क्रीन से वो कह रहे हैं
0: डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन, आप इतना आउटरीच करने के बाद अगर बच्चे बोल रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा है कि नहीं, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस आउटरीच?
2: No, first of all, thank you to this gentleman for explaining that Gen Z lingo. मैं तो कुछ और ही सोचने अभी घास से निकल
0: गया. Don't touch that grass. Don't touch that grass.
2: No.

0: you which side the mood of the country is on.
1: Are you suggesting that he's a turncoat?
2: Okay. Your leader also hasn't answered the question. Rahul Gandhi also hasn't answered the question.
0: Fair enough.
2: Nobody is answering the question. Everyone is pretty. For example, the Prime Minister said a government has no business to be in business. Has anybody asked him ki aapne kaha tha aur 1800 PSU chala rahe ho? Has anybody asked him?
1: Okay, but aren't we comparing apples and oranges over here? We are talking about communication of a larger scale, Dr. Ranganathan, where I'm simply talking today about the narrative building through social media. And surely these kind of issues you can't expect to be explained or simplified or answered through a meme. Dr. Ranganathan, yes, finish.
2: I'm saying what Prime Minister needs to do. Yes, he's great. He's on Twitter. He's on Instagram, like every leader. But every leader should do AMA. I don't know whether the Gen Z know that acronym or not.
1: Ask me anything.
2: See, correct.
1: Okay.
2: वो जिस दिन करोगे ना उस दिन मैं मान जाऊंगा आपकी टू वे कम्युनिकेशन हो रही है.
1: ओके, डॉक्टर रंगनाथन की मन की बात है भाई कि प्रधानमंत्री एएमए करे आके ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे वेरेवर.
3: देखिए, एक तो आनंद जी जो कह रहे हैं ना कि अब अजीत पवार जी अब नहीं है तो इसलिए उनके बारे में क्या कहें, लेकिन किसी पार्टी में कोई करप्शन या किसी तरह के आरोप हैं वो आए और उस पर कोई पार्टी जवाब दे, ये बहुत आइडियलिस्टिक आनंद हो रहे हैं. तो ऐसा हो तो बड़ा अच्छा, लेकिन संभव नहीं. दूसरा, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, ये सब नौजवान हैं, लेकिन मैं इतनी देर में मुझे लगा कि थोड़ा सा सोशल मीडिया की डिबेट हो रही हो, जो मैंने शुरू में कहा था कि नैरेटिव है या व्यू पॉइंट जा रहा है, थोड़ा सा आप ज़्यादा रीच हो जा रही है. 8.7 मिलियन व्यूज़, जिसको आप लोगों ने कहा कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जो वीडियो दिखाया गया, 8.7 मिलियन व्यूज़. ये जितनी भी कैंपेन बीजेपी की चली है अभी सोशल मीडिया की नई वाली, उन सब में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है. कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में यही इसी तरह का माहौल बनाकर, जो सोशल मीडिया पर एग्रेसिव कैंपेन थी, एक तरह से कहें कि उन्होंने लीड ले ली, बीजेपी ने उसको इस तरह से काउंटर किया. लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि यह काउंटर करना बहुत अच्छा है, नए मोजो इज बैक और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन सबके बाद क्या है? क्या उसका कोई नैरेटिव है, मैसेजिंग है? क्या कहीं पर लोग उससे जुड़ रहे हैं? मेरा ये मानना है ये 15-20 सेकंड के बाद जैसे वो आप रील आगे बढ़ा देते हैं वैसे इसकी सारी मैसेजिंग चली जाएगी.
1: वरना
3: हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है आइडियलिस्टिक होकर बात करना, मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं. ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? जिनके स्कूल बहुत अच्छे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. 25,000 स्कूल अगर बंद हुए तो 1,00,000 स्कूल खुल गए, वो प्राइवेट स्कूल्स थे. ये जो नौजवान पढ़ रहा है वहीं से पढ़ के आ रहा है, उसको भी ये बात करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता है कि इशू ये नहीं है.
4: सर, आई वांटेड टू कंप्लीट, मैं यही बोल रहा था ये बात, दैट कैन वी जज द मॉरल लीगल कैरेक्टर ऑफ अ मीम or a video by merely looking at the logo that is mentioned at the top right corner, whether it belongs to the hand or the BJP or the Samajwadi party. Because what happens is, Akhilesh Yadav posted a video, the Samajwadi party posted a video on Yogi Adityanath. The BJP responded back by posting a video on Akhilesh, or the other way around. So the question is that why do we give a clean chit to Akhilesh Yadav's party when we are condemning Yogi Adityanath's meme? And why do we do the other way around also?
1: Very quickly, actually, let me show you the videos that this young man is mentioning. So what happened was that the BJP put out this video calling Akhilesh Yadav Tipu, and then Samajwadi party responded by showing Yogi Adityanath as somebody who is smoking a chillum. Can you please show that video which was there? All right. So basically referring to the time that Akhilesh Yadav was chief minister. This was posted not by the BJP's official handle, by the way, but by some Yad Rakhega UP. That was the name of the handle. And then they spoke about lawlessness, about how girls and business weren't safe, what happened at Safai, etc. And then the Samajwadi party held a press conference and they responded with a video on Yogi Adityanath. The question then is that it is an even for even. Today, Dimagi Naksal, that campaign is being attacked. Then Akhilesh Yadav, Congress are all doing the same thing, right? This is narrative building.
5: Yeah, narrative building ho raha hai. When you show a video jismein guns nikal rahe hain aur jisko maar rahe hain, uspe likha hua hai Dimagi Naksal. Aapne define kiya Dimagi Naksal kaun hai? Us video mein nahi define kar paaye na aap. Anybody who questions the Dimagi Naksal, any professor, teacher, student, हमारे कॉकरोच बच्चे जो सड़क पे आकर के लड़े, they are all Dimagi Naksals because you question the government. और ये मैसेज आप दे रहे हो, हमारी नहीं सुनोगे तो ये होगा.
1: This man is saying it's satire.
2: Yes,
1: go on, Anand. Yes.
2: It's very simple, and that question should be answered by none other than my soulmate Vivek Srivastava. I'll tell you who a Dimagi Naxal is, who does not believe that Hidma was a terrorist. Now let me ask Vivek. Vivek,

0: TV in the last 24 hours. It is because of the interview that was conducted of that disgruntled former finance secretary that everyone is talking about the game. So, you know, surprise, surprise, Padmaja, the narrative was set by you, which is a brick and mortar company, not someone from social media.
1: And look, our job is to ensure that everyone gets a platform and they get to say their piece, and we will provide a counter view as well. We don't believe in censorship. We are a big tent where every shade of opinion gets expressed, and that is the nature of democracy. We are not here to censor and select who gets to have a voice, and I think the perfect example of that is People's Sansad as well. But I want to draw a small distinction. You spoke of individuals. We are purely addressing here the nature of political messaging. And since we spoke of memes, right, you have a meme today that Kaleen Bhaiya, whatever, slapping somebody. I don't know if it is Kaleen Bhaiya or it is Munna Bhaiya. Sorry, Munna Bhaiya, slapping a Dimagi Naxal in college. But earlier also we had cartoons, right, where somebody in Maharashtra showed a cartoon of Uddhav Thackeray bowing before Sonia Gandhi. That person was a Navy veteran. He was attacked. The famous case of a Jadavpur professor.
2: Correct.
1: Ket ki Chitle. She went to jail. Then you had somebody, the Jadavpur professor, who shared a cartoon. So yes, the nature of satire, joke has happened.
3: You've been a journalist then. You're a journalist now.
1: Yes.
3: I will condemn what happened then. What is the response now? Why is the only response by the BJP ki aapne pehle kiya? What is the answer?
1: Okay.
3: Aap action lene wale ho ya nahi lene wale ho? Mia culpa. Humne galti ki. Abhi aap bolo.
1: Acha, aapko lagta hai ki Keti Chitle wala galti tha?
3: Galti thi.
1: Keti Chitle. Uddhav ji ko jo cartoon wale peeta tha.
3: The arrest of Keti Chitle was wrong. The arrest of anybody persecuted for their opinion is wrong. Every government, regardless of whether it's my government or the Bharatiya Janata Party, has to be held accountable. But the media cannot become a lapdog and start saying, ki, no, no, it happened in your time as well. And I'm not saying only this to you, but to the media as a whole.
1: No,
3: the
1: no.
3: answer to an allegation of current persecution cannot be that persecution has happened in the past.
1: Okay.
3: I don't accept that.
1: Okay, what do you make of this kind? Yes, yes, Dr. Ranganathan, yes. What do you make?
0: No, look, just when he was cornered, he's come out brilliantly, but not with flying colors. Fact of the matter is, in every current non-BJP ruled state, such trampling keeps on happening.
4: Why don't you speak of the BJP states for a change?
0: Of course.
4: आप बीजेपी रूल स्टेट्स के बारे में थोड़ा बोलिए ना. केंद्र में सरकार इनकी है क्या? शरद पवार की? केंद्र में सरकार मोदी की है. आप वाटर बाउंड्री करके 50 साल पुरानी चीज को उठा करके जस्टिफाई मत करिए. यहाँ गोलियां चलवाई जा रही हैं वीडियोस में, बोला जा रहा है ये दिमागी नक्सल
2: हैं. इसीलिए विवेक श्रीवास्तव वाटर बाउंड्री कर रहे हैं.
4: नहीं नहीं, विवेक श्रीवास्तव
2: वाटर बाउंड्री कर,
4: डिफाइन करिए दिमागी नक्सल पहले. क्या होता है दिमागी नक्सल? किसको चलाओगे गोली?
2: अरे सर, अभी तो पूछा था हिडमा वाला, वही दिमागी नक्सल.
4: नो नो, ये
2: वही दिमागी नक्सल. आतंकवादियों को जो आतंकवादी नहीं कह सकता,
4: एक मिनट
2: दिमागी नक्सल.
1: You know, the fact is that you might think that these memes are not setting the narrative, but look at the way in which the phrase Dimagi Naksal is now commonplace. People are using the phrase of Dimagi Naksal, and that is what narrative building is, right?
4: To victimize the voice of dissent.
2: पद्मजा, प्रधान
4: ये सरकार के खिलाफ है तो ये दिमागी नक्सल हैं.
2: प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये टर्म दिया और इसलिए वो नैरेटिव बना. किसी मीम की वजह से, किसी सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से नहीं बना.
4: उस शब्द को उठा करके हम
2: कहा हथियारी नक्सल समाप्त हुए, दिमागी नक्सल को समाप्त करना है. नैरेटिव बना, ये बनता ही.
1: तो अब दूसरी तरफ से दूसरा नैरेटिव बनेगा. कांग्रेस अपना नैरेटिव लेकर
2: कोशिश करना,
1: शिवसेना अपना नैरेटिव लेकर.
5: रियली सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हाट आनंद सर एंड हर्षवर्धन सर सेड दैट यू नो it has happened in the past as well with Congress and everything, but I'm really sorry what Anish sir said, that you know it is happening because in today he got a call and everything. It was just an example to tell maybe the post or maybe the video was satire or something, but it does affect the youth, because considering there are so many people, or let's say the youth of the country, there will be 50% of people who will take it something very seriously and people who will not take it seriously. So saying that it was not a narrative but it got intended like that is something very baseless to say coming from a political party.
1: You're saying that the youth, impressionable youth, is taking away ideas from such videos.
5: Right, because they do and they implement, and that is why
4: violence बढ़ा रहे हो,
3: गुंडागिरी,
4: आप गुंडागर्दी बढ़ा रहे हो.
1: Dr. Ranganathan,
5: and again we going back to the past. I'm really sorry. That's where as a country I guess we fall back, that every time we have to support something we go to the past, that this happened in the past.
1: Don't keep looking over your shoulder. Yes, Dr. Ranganathan, go.
0: First of all, let's get one thing clear. We are not going going to the past.
4: You are.
0: As I said, the current non-BJP governments are trampling freedom of speech as much as the current BJP government. So please get your facts right. Learn what is happening on freedom of speech in Punjab, in Tamil Nadu, in all the non-BJP or Congress rule states, where the sitting Chief Minister of Telangana says he will strip journalists in public. Is that the past? No. Hmm. He is still the sitting Chief Minister
4: of Telangana. Why don't you talk of Hemanta Biswa Sharma?
0: No, please.
4: Hemanta Biswa Sharma pe bolo na.
0: Sab pe
4: washing machine pe bolo na.
0: I included everything.
4: Ab wo BJP washing machine nahi hai, dhobi ghat ban gaya hai.
0: Don't do this.
4: Sare galat kaam karo, aao le lenge, bolne na.
0: Why not?
4: Do not derail. Prime Minister kis party ka hai?
0: Arre bhai, I have condemned.
4: Education Minister kis party ka tha?
0: अरे सुन लो यार, अभी
1: यू टॉकिंग अबाउट हेमंत बिस्व शर्मा बिकॉज ऑफ द वीडियो बिफोर द इलेक्शंस वेयर ही वाज सीन टेकिंग द
4: वे ही स्पीक्स द काइंड ऑफ कमेंट्स ही डज व्हाई डज नॉट स्पीक अप अगेंस्ट
1: ओके वी हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर यस फिनिश योर पॉइंट डॉक्टर रंगनाथन
0: एज आई सेड आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट आई हैव कंडेम्ड एवरी गवर्नमेंट कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हु हैव एवर ट्रैम्पल्ड ऑन फ्री स्पीच एंड कंटिन्यू टू दैट्स पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इज one gentleman was absolutely right. Satire has to be taken in that spirit. You can't say that it is a call for violence, because I will ask the same question. Was the famous slogan of 20 years ago, Tilak Tarazu aur Talwar Inko Maro Joote Char, was that not a call for violence? Yes or no? Virek Srivastava?
4: आप जो हैं, आप सुनिए, सुनिए, सुनिए. आप यहाँ पे आज के 2026 में बीजेपी के कुकर्मों को डाइल्यूट करने के लिए बैठते हैं.
1: ओके, सो इफ वी आर, आई थिंक देयर इज अ लार्ज कंसेंसस ओवर हियर दैट परहैप्स स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ इमेजरी इन दीज मीम्स, बट लेट्स नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द मीम्स अबाउट द जीडीपी डिबेट. नाउ लुक, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डिबेट. अ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट वेरी कंफ्यूज्ड, बट व्हाट वाज द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट वी सॉ कमिंग फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस, एंड लेट्स क्विकली गेट दैट अप. यू'ड गॉट दिस, which was put up by the Congress, where they showed a beer mug and they basically said that the actual beer was the Indian economy and the GDP figures were basically all froth. It was all fluff. Then the BJP came back and said ki bhai tum logon ko to sirf beer samajh mein aati hai, hum log chai ki baat kar rahe hain, and the GDP actually is 7.8% in the Modi era, and you had a dimagi naksal Congress. The Congress had a comeback to this as well, where they then made a chai edition on Bhakt's request, where they said ki bhai chai bahut kam thi, upar sirf jhag jhag tha. What did you guys make of this back and forth? Chalo, yahan pe koi goli woli nahi chal rahi hai. You thought this was clever? You think that the point came across?
2: Chai mein jhag hoti hai.
1: could be cold coffee, ho sakta hai.
2: Chai mein to kabhi jhaag nahi hoti. Kuch to gadbad hai. Congress ke dimag mein, nahi, Congress ke is campaign mein.
1: Aapne meme ko bhi fact check kar liya.
2: Main keh raha hu Congress ke campaign mein.
1: I thought that was, you know, the domain of only a few in this country who get to fact check even a meme, but good going.
2: Lekin aapko bhi agar lena chahiye. Agar dimagi naksal pe BJP ki wo jo campaign hai, wo violence ki call hai, to fir ye kya hai?
6: ये कुछ भी नहीं है.
1: कुछ नहीं, ये तो मतलब
2: मैं ही कह रहा हूँ ना, क्योंकि दरअसल जब आप किसी तरह की मीम या कैंपेन चलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं. उसमें आप देखिए, वो कोई ऐसा थोड़ी रहा है कि कोई कह रहे हैं कि नहीं सबको गोली मार देना. दिमागी नक्सल जो है उसमें एक साथ तत्तर गोलियां चल रही, ऐसे ही चलता है. विवेक बहुत उम्रदराज है, इनको अभी समझ नहीं कि कैसे लोग बात कर रहे
3: हैं. प्रधानमंत्री जी जोक मार रहे थे जब रेड फोर्ट से उन्होंने दिमागी नक्सल कहा.
2: ना वो सीरियस थे,
3: तो वो
2: इसीलिए उसको कैंपेन कन्वर्ट किया ना.
3: अच्छा,
2: वो सीरियस है.
3: उसको मीम बनाना सही है या गलत है?
2: बिल्कुल. अरे मीम पे तो आप बात करते हैं. आप अनिश भाई, आप तो उसी जनरेशन से आ रहे हैं, हम लोग तो थोड़ा आगे के हैं. विवेक भाई तो उम्रदराज हैं, लेकिन आप तो समझिए.
1: ओके, व्हाट डू यू गाइस मेक ऑफ दीस काइंड ऑफ मीम्स? आर दे सेफ? आर दे पुटिंग द मैसेज?
7: आई से दिस इज वेरी रॉन्ग बाय कांग्रेस, बिकॉज़ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स डेटा, लाइक दिस इज नॉट द बीजेपी का डेटा, दिस इज डेटा व्हिच इज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट. सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को क्वेश्चन करना इज जनरली वेरी वेरी रॉन्ग. अगर ये डेटा गलत होता तो वर्ल्ड बैंक, IMF, 85 ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के पीछे लग जाती कि आपकी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी आप दिखाना चाह रहे हो. सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को क्वेश्चन करना इज वेरी, आई डोंट नो इफ इट इज लीगल, बट दिस इज वेरी बैड.
1: ओके, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ द काइंड ऑफ मैसेजिंग? आर यू ओके विद दीज मीम्स? बिकॉज एवरीवन हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट दिमागी नक्सल एंड द यूज ऑफ गन्स ओवर देयर, बट ये चाय बियर ठीक लग रहा है?
7: मतलब इसमें कुछ इशू नहीं है. मतलब इट्स लाइक ये तो मीम मटीरियल है, मीम मटीरियल में वो कुछ भी डाल सकते हैं, बट जो मैसेज आ रहा है, मैसेज जो कन्वे हो रहा है वो गलत है.
1: मैसेज भी गलत है.
7: हाँ, मतलब वही, क्योंकि दैट इज इंडिया का डेटा.
2: चाय को बियर टाइप का.
8: द क्वेश्चन लाइज हियर सर. बार बार पूछ रहे हैं डिफाइन दिमागी नक्सल, डिफाइन दिमागी नक्सल. सर, यू डिफाइंड अ भक्त, यू डिफाइंड अनंत भक्त.
6: हु
8: इज अ भक्त?
6: आई विल टेल यू,
8: बिकॉज़ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश सर. आई फील दैट यू शुड वर्क हार्डर ऑन द मैसेंजर देन यू वर्क ऑन द मैसेज. merely because the Prime Minister has called somebody a Dimagi Naxal from the Red Fort is the reason why we are debating on Dimagi Naxal. Similarly, the term cockroach was coined by the Chief Justice of India. That led to...
1: What do you mean by you should work harder on the messenger because, rather than the message?
8: Yes, so the messenger is Prime Minister. That is why we are actually debating on Naxalwad and this. If any of us have talked about any person, have told him that, okay, you are a Dimagi Naxal, it wouldn't have made any
3: obviously
8: difference.
3: Yeah, you are but right. Your analogy is dangerous. Yeah. Because the Chief Justice of India said cockroach.
8: Yeah.
3: The cockroaches came together and the education minister resigned. Prime Minister said Dimagi Naxal. Dimagi Naxal has come together. Who's resigning?
1: Anish, who knows somebody's resignation is now going to be sought on the basis of
3: the
1: Dimagi
3: Naxal. The point is you hurl an abuse and we will make it into a joke and that joke will then be on you.
1: Okay, the joke is going to be eventually on the BJP if they persist with this, Dr. Ranganathan.
0: No, first of all, I don't know why in this age of social media and Gen Z, Anish consistently feels that he will not be fact-checked. Can I please ask Anish, when he so, in a blasé fashion says this cockroach was used, what was exactly the Chief Justice of India's remark on cockroaches? Please tell me. I want to hear it from the horse's mouth. Tell me.
3: Dr. Ranganathan, I agree with you completely. The problem is that the Chief Justice at that moment had said that there were certain petitioners over there who were lazy and unemployed. The poor guy who was filing the petition, unfortunately, should not have filed the petition. But the tone and tenor of the Chief Justice was wrong.
0: Achha, ab tone and tenor.
3: Par abhi uska mazak udaya jayega. Out of context, aap Rahul Gandhi ke statement ko bhi lete ho. To Chief Justice ke statement mein out of context kisi ne le liya. To fir kya dikkat hai?
0: Aap le rahe ho. आप ले रहे हो
3: मैं कहा देश
4: दुनिया ने ले लिया
3: पब्लिक ले रहा है
4: भाई आनंद जी देश खड़ा हो गया था जंतर मंतर पे उस एक शब्द कॉकरोच पे
2: सारे दिमागी नक्सल आ जाएं एक बार
4: ये सारे बच्चे बैठे हैं
2: सारे दिमागी नक्सल सामने
1: यस वी कैन हियर यू
0: यस दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग आई सेड दिस हाफ एन आवर अगो the fact is that all the problems that the brilliant Gen Zs are highlighting have previously been highlighted by every segment age-wise of the population. We have been shouting hoarse about the bad condition of roads, about the subsidy, the freebies. We've been shouting hoarse about the school system. We've been shouting hoarse about the reason why the education minister must resign. Did the government listen to us? No, they didn't. When they heard Gen Z was because they came on to the streets. So what is the message that is going on? Not that some social media meme would work or some communication one way or two way would work. That anarchy would work. That is the message. Accept it.
4: Not anarchy.
1: Okay. I want to go to a few more people over here who want to ask questions. Yes. What's your point of view, young lady? Yes.
6: Hello, my name is Ananya. I wanted to ask, how do you want to set us a narrative? If we go for speeches, we are ignored. If we go for protests, we are criticized. If we go memes, we are immature. How do you want to set us a narrative? How do you want to, how do you want us to ask the questions to the Prime Minister?
4: You are not supposed to ask questions. Don't you know that? You are not supposed to ask
6: that.
4: Questions.
6: I know that. Then what is the
1: India.
6: Point of the government?
1: In India, you can ask questions of the Prime Minister. You are mistaking it for another country.
4: You will be declared as a Dimagi Naxal because you ask questions.
1: Yes. How do you expect the young people then?
2: Padmaja, Bharat mein social media par koi rok nahi hai. यूथ जो मन में आता है वो सवाल पूछता है जो मन में आता है वो मीम बनाता है जहां मन करता है वहां प्रदर्शन करता है और अगर उसके बाद अगर उसके
4: 15 साल की बच्ची घर में घुस करके उससे माफी मंगवाई
2: एक एक
4: और उसने फिर से सोशल मीडिया पे डाला है
2: विवेक जी
4: जो खाना खा लो आई एम स्टिल देयर
2: मत कीजिए
4: ये है फ्रीडम
2: नहीं नहीं मत कीजिए ऐसे बच्चे ऐसे गाली देने को मत जस्टिफाई
1: कीजिए सवाल पूछने की आजादी है
2: ना गाली देने की नहीं होनी चाहिए ना इस तरह की गालियां देने की आजादी होनी चाहिए
1: नहीं होनी चाहिए
2: नहीं नहीं नहीं होनी चाहिए
4: उसको ह्यूमिलिएट किया उसके पेरेंट्स को हैरेस किया उसे हाथ जोड़ के माफी मांगवाई
2: क्वेश्चनिंग फ्रीडम
4: प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने सबको माफ कर दिया
2: गाली देने की आजादी नहीं होनी चाहिए
4: कुछ नहीं गाली
2: नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर उसको रियलाइज अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर विवेक जैसे लोग उनको अपने साथ
4: देखिए सुनिए
2: उस तरह की गालीबाजी गालीबाजी को आप नॉन एस्टिमेट
4: नहीं अलग चीज गाली इज बैड फॉर हेल्थ लड़का दे चलेगा लड़की ने जंतर मंतर
2: चलेगा
4: इनके पेट में
2: लड़का भी क्यों देगा
4: लड़की ने गाली दे दी तो इनके पेट में दर्द की वजह से बात लड़का देगा कोई
2: मेरे लिए गाली मुद्दा आपके लिए लड़का
1: I think the point you are making here is more of a moral point, but the government of India cannot stop anyone from saying what they want on social media. तो बात यहाँ पर पॉलिटिकल
3: आपने कहा है कि गाली गलौज देना गलत है, डेथ थ्रेट देना, रेप थ्रेट देना, उसके घर पे गुंडे भेजना, ये गलत नहीं है,
2: बिल्कुल गलत है।
3: पर एक्शन किसके खिलाफ ली जाती है? लड़की के खिलाफ। आठ लोग जो घर पे पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन ली गई है या नहीं ली गई है? डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट दी गई है, उनके खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है? जयपुर डायलॉग के फाउंडर के खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है? क्या चल रहा है सर?
1: यू नो व्हाट वी हैव एक्चुअली सीन इन प्ले ओवर हियर इज हाउ सोशल मीडिया कैन एंड अप बीइंग अ वेरी वेरी डेंजरस एंड डबल एज्ड सोर्ड. लुक व्हाट हैपेंड. यस, दैट यंग लेडी फॉर व्हाटएवर रीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर शी सेड, शी वेंट वेरी वायरल एंड शी वेंट वायरल वॉलंटरिली. अनफॉर्चुनेटली दो दिस ह्यूज ब्लोबैक हैपेंड एंड हुएवर इज traumatizing her, threatening her, should face the heavy hand of the law. 30 seconds, Dr. Ranganathan. Then I want to take the last set of questions. Yes.
0: Yeah, sorry to use a Gen Z meme. Kabhi-kabhi to lagta hai ki sirf apni sach bolta hai. You know, when Vivek Srivastav says ki gaali dene mein kya problem hai, he was the one who until a few weeks ago was defending the execrable gaali that Udayanidhi Stalin made against Trisha Shah and the Chief Minister of Tab. Keh rahe the, sare sab theek hai, gaali to di hai. And as far as Harshvardhan ji is concerned, he is totally wrong when he says gali should be prosecuted. Who decides what is a gali, what is not? Yes. Agar main kal aapko kahun ki Hindu sabse khatiya janwar hai, aap kahenge isko ban kar do. Aap khud
1: you know, I love Vivek Srivastav. This is typical left behavior. When the question was to him, he was quiet as a mouse. The moment the cannon was turned to Harshvardhan ji, he responded with an emphatic yes. That is where all the emphasis was there. Only 30 seconds.
2: रहा हूं, कोई भी लड़का या लड़की इस तरह की गालियां पब्लिकली दे किसी भी मूवमेंट में, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता. और मैं अरे बीच में नहीं,
1: बीच में नहीं,
2: मैं हूं मोरल पुलिस अपने लिए. आप मत होइए
4: बच्चे,
2: आप मत होइए
4: बच्चे. हर स्कूल में कॉलेज में
2: बात. मैंने कतई ये नहीं कहा कि उसे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए. मैंने उसी सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर उस बच्ची ने माफी मांग ली तो ये बात खत्म कर दी जानी चाहिए. लेकिन उसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसका डर खत्म हो गया, गाली देके डर खत्म हो गया, ये तो कौन सी बात है? ये तो कोई भी कर सकता है.
1: Okay, now I come to the question, can social media end up being a double-edged sword, not just for this young lady, but even for the political parties? ठीक है, आपने किसी और पे तो मीम बना दिया, but then the shoe will be on the other foot also, ना? वो भी आप पे बहुत खतरनाक मीम बना सकते हैं.
9: Exactly. My name is Rama Shukla. पहले तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी. सर ने मेंशन किया था स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में, देन सर ने बोला, काउंटर किया कि ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोले जाते हैं, उनको बुलवाए जाते हैं. बट सर
2: थोड़ा मैं फैक्ट चेक कर दूं, मैंने सोशल मीडिया पर वो बात कही थी. स्वतंत्र को तो मैं जानता भी नहीं हूं क्या ये बोल रहे हैं. मैं उसके लिहाज मैंने कहा था सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे आईटी सेल के ट्रोल्स हैं, आईटी सेल कांग्रेस से जुड़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह की कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं. मैं करेक्ट कर
9: तो सर मैं आपको
2: कोई उसका लेना देना नहीं, कौन में जानता
9: नक्सल से देखते हैं सर. हमें बताएं, हमें क्या बोला जाता है? ऐसे देश में सृजन कैसे होगा जब जहां पर इनह्यूमन जैसे वर्ड जैसे दिमागी नक्सल को यूज करा जाता है, राइट? हमें कौन अकाउंटेबिलिटी देगा? सर आप यहां पे बैठे, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं. एक बच्चा भारत में पैदा हुआ है और अभी वो पैदा ही हुआ है, उसे नहीं पता कि ये नक्सल शब्द है क्या. उसे सिखाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्ता से उसे सिखाया जा रहा है जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं.
2: ये आपने कैसे कह दिया कि उस बच्चे को ये सिखाया जा रहा है? अगर कोई एंटी इंडिया है, अगर कोई नक्सलियों के साथ खड़ा है, अगर कोई इस देश के आदिवासियों के अधिकारों पर हमला कर रहा है, तो उसके बारे में देश के बच्चों को नहीं जानना चाहिए? आप कैसी बात कर रही हैं? और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम है देश के लिए जो भी थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करना.
9: सर व्हाट अबाउट मणिपुर सर
2: ने कहा
9: सर थ्रेट
2: कि हम यार नक्सल सर व्हाट अबाउट मणिपुर
9: सर
2: मुझे लगता है सही सही उसको संदर्भों में समझने की जरूरत है जब आप ये कहते हैं बच्चे को नहीं सिखाया जा रहा है जो भी समझने लायक लोग हैं उनका
9: सर हमें ये क्यों नहीं बताया जा रहा
2: नक्सल की पहचान कराई जा रही
4: है बच्चे को धमकाया जा रहा
9: है सर इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
4: आपको धमकाया गया है
9: ओनली 10 सेकंड इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको डिग्निटी के साथ मेंटेन करना क्यों नहीं सिखाया जा रहा सर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर वार क्यों कर रहा है क्या सिखाया जा रहा है सर
4: ये फासिस्ट है और आप जो है ज्यादा सवाल पूछेंगी तो आप दिमागी नक्सल हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर समझा नहीं रहे थे धमका रहे थे
1: ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग
2: फ्रॉम नॉर्थ कोरिया फासिस्ट फ्रॉम चाइना
1: ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग अगेन लाइक वी सेड इन द बिगिनिंग इट

0: be a double-edged sword. If you coin things like Andhbhakt, Gomutra drinkers, Dimagi Naksal, then eventually it's going to cut both ways. Yes, 30 seconds, ma'am, ask your question.
1: Hi, I'm Nivedita and I have a question for sir. You said ki 15 saal ki bachchi usne gaali de diya, chhod do usko. So is it okay for a teenager or anyone who is under the legal age to cuss at the PM? Because wo wahan protest mein gayi, she was not with her parents or someone who is, you know, above the legal age. So is it fine ki hum PM ko aisi gaali de de, and then anyone would be free to do anything and say whatever they want to, right?
2: Main badi practical baat bolunga, log agree kare na kare. School ke bacche aapas mein gaaliyan dete hain, haan ki na?
1: That is fine, sir.
2: Just hold on, let me answer. कॉलेज के बच्चे आपस में गालियां देते हैं, खासकर बॉयज, हाँ कि ना? हॉस्टल में गालियां चलती हैं, हाँ कि ना? देते हैं ना? एक पंद्रह साल, एक मिनट, एक मिनट,
3: लेकिन जवाब नहाते हैं, हाँ कि ना? विवेक श्रीवास्तव बाथरूम में बिना कपड़ों के नहाते हैं, हाँ कि ना? सुनिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जनरलाइज करेंगे, आप गाली देने को, देखिए
2: कितना डर गए, कितना डर गए, ये डर लगता है, देखिए ये होता है डर,
3: समझा रहे हैं?
2: इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डर, इसको कहते हैं मॉरल पुलिस,
3: कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट,
2: आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे,
3: कभी भी पॉजिटिव नैरेटिव पर बात नहीं करते,
1: बट ही इज एल्डर टू अस एंड एज किड्स एज टीनेजर्स वी शुड टीच देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. उनको अगर पीएम के बारे में कुछ बोलना था दैट शी डजंट लाइक द पीएम, शी कुड हैव सेड इट, बट यूजिंग दोज वर्ड्स दैट वाज नॉट करेक्ट.
0: ओके, आई वांट टू वेरी वेरी क्विकली बिफोर वी गो डाउन दिस रोड, 30 सेकंड्स ओनली अनीश, एंड आई वांट टू रियली show you one last video. Yes, 30 seconds, go on Anish.
4: The simple answer is that when BJP MPs do it, it's okay. When the abuse goes towards the Prime Minister, it's not okay.
1: I'm not saying about a PM or...
4: The problem is today you have a defamation case that can be filed against somebody for hurling abuses. You cannot send goons to their house for filing abuses.
1: Definitely, I agree with you, sir. We can take action for that as well.
4: But
1: I'm
4: why
1: not
4: is that action now? Can the BJP... Now, if there is somebody who is abusing the Prime Minister and somebody... You abuse the Prime Minister hypothetically and somebody shows up to your house.
1: Yes, sir.
4: Assuming they are BJP supporters.
1: It's not, we should take action.
4: Can the BJP wash its hands off of their supporters?
1: I am not with BJP or with anyone. I'm just saying that he is elder to us. He is the PM of our country.
4: File a case. The court will decide whether it's defamation or not. You are not the law. I am not the law. Nobody is the law.
3: PM ने किसी को नहीं भेजा, लेकिन शरद पवार के ऊपर टिप्पणी करने पर लोग चले गए थे गुंडे मारने.
1: And also,
3: नेवी वेटरन का सर फोड़ दिया था.
4: आप देखो,
3: केतकी चिताले जेल में भेज दिया था.
4: Conveniently,
3: एक नहीं है. जाने कितने ऐसे उदाहरण.
4: जब पवार साहब ने एक शब्द नहीं कहा केपी चितले पर, शरद पवार पे आप नाम करोगे, जब आप इनके आदमी लोगों का सर फोड़ रहे हैं, आप
3: जेल से नहीं छुड़ाए
0: हो. आई थिंक सर्टेन रेड लाइन शुड नेवर बी क्रॉस्ड, वेदर इट्स इन रियल लाइफ और ऑन सोशल मीडिया. वन, इट इज नॉट ओके टू थ्रेटन वायलेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दैट पर्सन इज, ईदर टू समबडी हु होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और समबडी हु इज सिंपली अ सिविलियन. बट आई वांट टू एंड बाय शोइंग यू वन वीडियो. वी हैव सीन दैट एंटायर सेल्फी video trend which the Prime Minister had started. A lot of people picked up on it, and we've now seen Yogi Adityanath also jump onto that trend. I want to get a quick sense of the room on what they think of Yogi Adityanath now jumping onto the selfie trend. Yes, any thoughts over here? Kyun bhai, sab log selfie video banaye, kaisa lag raha hai? What do you think of this video? Good, bad?
5: I think it's okay, but because PM Modi did the same thing. So he.
0: What do you think of this video?
6: आई थिंक ओके, लाइक इट्स क्रिएटिविटी. अगर एक कर रहा है तो अगर दूसरा करना चाहता है, अगर उससे
0: अब ये सेल्फी वीडियो है क्यों, नॉर्मल वीडियो में आप नहीं देखते क्या बोल रहे हैं?
6: अरे वो इनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में, हम ज्यादा नहीं कह सकते.
0: क्या लग रहा है?
4: एवरी पर्सन यूजेस हिज कैमरा बेसिकली. सो इन्होंने इफ ये जेन जी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे या फिर क्या था ये, इसका मुझे आइडिया नहीं है. लेकिन द थिंग इज कि उनको उनका मन हुआ तो उन्होंने कर दिया.
0: पर आपको पसंद आया कि नहीं भाई? जेंजी
4: हमें पसंद की बात नहीं, हम पहले अच्छे से फैक्ट चेक करेंगे कि रियल है या नहीं, और फिर अच्छे से बात है इनकी या नहीं, उसके बाद देखा जाए.
0: ऑलराइट, आई थिंक
2: ट्रेंड में शामिल होना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं.
0: ओके, सो दे आर
4: एंगल विल गेट बेटर ओवर टाइम.
0: ओके, 10 सेकंड्स ओनली डॉक्टर रंगनाथन.
7: Yes, please realize that if BJP forwards one Yogi Adityanath video, then the BJP forwards 20 Rahul Gandhi videos.
0: All right, I'm going to leave it at that. But I think what this young man said is very, very important. Sure, you might think that they are jumping onto the trend by making this selfie video. But remember, this Gen Z that you're trying to connect with is also going to examine your message, not just the medium, not just the format, but will examine the content of your message and see whether that is appealing not just to their lingo, but also to their sensibility. Thanks very much.

0: वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है। चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो।
1: बोथ कांग्रेस एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्लीपलेस नाइट्स। जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
2: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्ट दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने। तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
3: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी, उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है, उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था, कोई फर्क नहीं है।
4: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता, मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी, दोनों बढ़ेगी।
5: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha Leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
6: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
7: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा मन्नी खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
5: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
8: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
9: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए यह सामान, सच्चाई देश की हकीकत यह है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
6: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
10: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बड़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
5: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
11: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
5: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
12: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तुरंत रोकना चाहिए।
13: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई एसआईआर के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया। आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा? 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने। फिर भाई आप राघव चड्डा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने वीआईपीओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है।
5: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
14: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சத்து சதுர அடி பரப்பளவில் ரூபாய் 1200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
15: He had not got a majority, simple absolute majority in Tamil Nadu itself. He is relying on the Congress, the Communist parties, VCK and IUML. How can he become Prime Minister? If he, once we had, were asking for separate Tamil Nadu, if Vijay gets separate Tamil Nadu, he can become the Prime Minister.
16: Despite resignation threats by Congress ministers, the TVK simply refuses to accept Rahul Gandhi's leadership nationally. The Congress party meekly says that the TVK ministers and MLAs are in fan club mode, even after scathing repeated rejections of Rahul Gandhi's failed leadership by TVK. The Congress party still continues to be in a cabinet. They just issue empty threats and warnings. What is preventing the Congress party from withdrawing support?
17: See, this is not a demand. You have to identify the words. You have to clearly mention the words. This is not a demand. It is about a wish. There is a well and wish different from demand. There is no demand is there. There is a wish is there for every individual. Every individual having some unique knowledge, unique satisfaction, unique thoughts. They are expressing their

0: कांग्रेस के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने। तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
1: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
2: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स the capability and mobility dono badhegi।
3: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action। Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who perform the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
4: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
5: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बॉटलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
3: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
6: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
7: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% GDP है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
4: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 period, but I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
8: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
3: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
9: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
3: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
10: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है, और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के, उनके वोट काटती है। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्ढा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको तुरंत रोकना चाहिए।
11: राघव चड्ढा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्ढा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई SIR के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया। आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा? 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने। फिर भाई आप राघव चड्ढा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने VIPs के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है।
3: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
12: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ₹1200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
13: He had not got a majority, simple absolute majority in Tamil Nadu itself. He is relying on the Congress, the Communist parties, VCK and IUML. How can he become Prime Minister? If he, once we had, were asking for separate Tamil Nadu, if Vijay gets separate Tamil Nadu, he can become the Prime Minister.
14: Despite resignation threats by Congress ministers, the TVK simply refuses to accept Rahul Gandhi's leadership nationally. The Congress party meekly says that the TVK ministers and MLAs are in fan club mode, even after scathing repeated rejections of Rahul Gandhi's failed leadership by TVK. The Congress party still continues to be in a cabinet. They just issue empty threats and warnings. What is preventing the Congress party from withdrawing support?
15: See, this is not a demand. You have to identify the words. You have to clearly mention the words. This is not a demand. It is about a wish. There is a well and wish different from demand. There is no demand is there. There is a wish is there for every individual. Every individual having some unique knowledge, unique satisfaction, unique thoughts. They are expressing their wishes, that's it.
3: Sting on stories from Tamil Nadu, political face-off is brewing in Tamil Nadu with leader of opposition Udayanidhi Stalin firing fresh salvos at the Vijay Sarkar over the rise in murders and sexual crimes in the state. Udayanidhi has slammed the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, accusing his government of reducing serious crimes to a matter of personal discipline and questioning why no action has been taken against the TVK leaders. But Chief Minister Vijay is now ready with a counter. He says Monday is the day that he answers back, promising to respond to all questions. Taking a swipe at the opposition, Vijay also said he hopes that they will not run when the answers come.
16: Dinamo newspaper torandu paatha enga paathalo kola kolla paaliyal vangudumegalle dinamo seidhigal vandukittirukku kadikalaiyila kuda indha alavukku vettamattaanga. அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தினசரி வெட்டுக்குத்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நகைக்காக கொலை, போதைப் பொருள் விற்பனை அம்பலப்படுத்தினா கொலை, மது போதையில கொலைன்னு கொலை நடக்காத நாளே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இல்லை. சென்ற ஆகஸ்ட் மாசத்தில் மட்டும் கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் 9 பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ஆட்சி அமைச்ச 116 நாட்கள்ல 10 ஆணவ கொலை நடந்திருக்கு. அதுல ஒண்ணுக்கு கூட முதலமைச்சர்கள் வாய் திறக்கல.
12: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர் கேட்கிற மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் கேட்கிற எல்லா கேள்விக்கும் அதுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை நான் மண்டி வந்து நான் பேசுறேன். நான் இங்க இல்லைனா கூட யார் யார் என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்கன்றத எனக்கு வந்துடும், எல்லாத்துக்கும் நான் தெளிவான பதில் சொல்றேன். உங்க சார்பா அவங்க கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் ஒன்று கேட்கிறேன்.
3: In other news, 5 years after becoming the face of one of India's most tense military confrontations with Pakistan, Group Captain Abhinandan Vartaman is now taking to the skies again, this time as a commercial pilot. The former fighter pilot and Veer Chakra awardee has now taken premature retirement from the Indian Air Force after 22 years of service and has reportedly joined Goa-based regional airline Fly 91. Here's more.
17: From the cockpit of a MiG-21 Bison to the cockpit of a commercial aircraft, Abhinandan Vartaman, the Indian fighter pilot who was captured by Pakistan in 2019, became the defining image of the India-Pakistan military crisis, is embarking on a new chapter in aviation. Former group captain has reportedly taken premature retirement from the Indian Air Force after 22 years of relentless service. Sources cited by news agency PTI say Vartaman joined Goa-based regional airline Fly 91 in August as a commercial pilot. Vartaman's name is etched in India's military history for what happened in February 2019. After the Pulwama terror attack killed 40 CRPF personnel, India carried out airstrikes on a Jaish-e-Mohammed training camp in Balakot. A day later, Pakistan's Air Force retaliated. What followed was an aerial combat that brought the two nuclear-armed neighbors perilously close to larger conflict. Wing Commander Abhinandan Vartaman was part of that dogfight. His MiG-21 Bison was shot down, but before his aircraft went down, India said he'd engaged and brought down a Pakistani F-16. Vartaman ejected, suffered injuries and landed in Pakistani territory. He was captured and held for 3 days. His release on the night of 1st of March 2019 became a moment watched across India. He returned home after 3 days in captivity. Later that year, he was awarded the Veer Chakra, India's third highest wartime gallantry award. Now, more than 7 years after the dramatic aerial confrontation, Vartaman is reportedly preparing for a very different kind of flight. Bureau Report, NDTV.
3: Well, we're slipping into a very short break, but come right back. Lots more line up for you here on NDTV. When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
18: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Harisha Sehgal, and Sanjay Hub.
3: The show that sets the prime time agenda.
18: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.
19: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
20: So many attacks.
19: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. and the world's most defining interviews. It's incredible.

0: Welcome back. You're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, and we are tracking all the stories that matter. Lots lined up for you with first headlines. Amid raging politics over India's quarter one GDP growth of 7.8%, Prime Minister Modi hails numbers, calls it India's growth story despite global uncertainties. Controversy in Kerala after Chief Minister's post condemning Grand Mufti's regressive remarks taken down. Congress calls it Facebook error. BJP accuses Satish Jain of appeasement politics. Vijay versus Udayanidhi in Tamil Nadu Assembly. DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked. Action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revanth Reddy. Writes to Kharge, alleges political marginalization under Revanth Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1,200. And well, you're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that, I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here. The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
1: जी नमस्कार. आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है. अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा. जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूँगा.
2: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो. और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे. वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है. चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो.
3: Both Congress and Pakistan have got sleepless nights. जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है. जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे.
4: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी.
5: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
6: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों बढ़ेगी।
0: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
7: Kash Nadda ji ko ek patra likhkar याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
8: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
0: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
9: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

0: फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% GDP है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
2: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
3: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
4: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Hwang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
5: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
4: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
6: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है, और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के, उनके वोट काटती है। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तुरंत रोकना चाहिए।
7: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई SIR के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए, ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से